0: वंदे मातरम।
1: मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य शा

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी ये प्रातःकालीन सभा। इस सभा में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं।

0: जी आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजा चाहते हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएस

0: LVF-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पून को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर

में ये मातृ वंदना। शब्द रचना है सर हरि सिंह गौर की और संगीत से सजाया है ललित मोहन ने। तमाम सुनने वालों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे मातृवंदना। शब्द रचना थी सर हरि सिंह गौर की और संगीत से सजाया था ललित मोहन ने। और आइए श्रोताओं, हम सुनते हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा और साथियों की आवाजों में ये पारंपरिक रचना।

अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम दास जलोटा और साथियों की आवाजों में ये पारंपरिक रचना। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं अशीत देसाई और साथियों की आवाजों में ये पारंपरिक रचना।

आशीष देसाई और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये पारंपरिक रचना। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में रविंद्र पठानिया का लिखा गीत। संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने।

जगदीश सिंह और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे रविंद्र पठानिया की ये रचना। इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह

अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं रोज की ही तरह सुबह 6:40 पर। सुबह 7 सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। कृषि संकेत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। आज का विषय होगा रासायनिक दवाओं के उपयोग में सावधानी रखें। विशेषज्ञ होंगे जीपी विश्वकर्मा। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। 7:45 पर सुनिएगा गांधी चर्चा कार्यक्रम।

सुबह 8:15 पर सुनिएगा लोक संगीत कार्यक्रम। सुबह 8:30 का समय होगा रूपक का। इसमें आप सुनेंगे जन्म कृष्ण कन्हैया, प्रस्तुति होगी डॉक्टर शांति जैन की। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे सुबह 10:00। सुबह 10:05 पर सुनिएगा गुलदस्ता कार्यक्रम, आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11:00 का समय होगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। 11:30 से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। शाम 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लफ्ज और लम्हे। शाम 5:35 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता कार्यक्रम।

शाम 6:30 का समय होगा सदाबहार गीत कार्यक्रम का। लोकरंग कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:45 पर। शाम 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम। 8:15 का समय होगा संगीत सरिता कार्यक्रम का। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे सागर संवाद कार्यक्रम। मन चाहे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:30 से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यही संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है रविंद्र साठे और

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर था रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगंकर का। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं 1949 में बनी फिल्म अंदाज का ये नगमा, मुकेश की आवाज में, मजरूह के लिखे।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: इस अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में, और आई श्रोताओं आप सुनते हैं 1949 में ही बनी फिल्म बरसात का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शब्द रचना है रमेश शास्त्री की।

0: पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: इस अंतराल के बाद आइए श्रोता, आप सुनते हैं 1950 में बनी फिल्म बाबुल का ये नगमा तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजों में। शकील बदानी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नौशाद ने।

1950 में बनी फिल्म बाबुल का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं 1954 में बनी फिल्म आर पार का ये गीत। आवाज़ है गीता दत्त की, संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

अभी आप सुन रहे थे 1954 में बनी फिल्म आर पार का ये नगमा गीता दत्त की आवाज़ में। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: पञ्चशु वर्षेषु द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकर्तुं महत्वाकांक्षिणं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चस्य आतिथ्यं करिष्यति। अस्मिन् मञ्चे ब्रिक्स सदस्य देशानां सहभागी देशानां च मुख्य न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयानां अध्यक्षाः तथा वरिष्ठाः न्यायिक नेतारश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अयं मञ्चः सहभागी न्यायाधीशानां मध्ये संवादाय अथ न्याय वितरण अन्ताराष्ट्रिय विवाद समाधान प्रौद्योगिकी सतत विकास चेत्येतेषां सम्बद्धानां समकालिक प्रकरणानां विषये विचार विनिमयाय अवसरं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे विभिन्नानां न्यायिक प्रतिनिधि मण्डलानां प्रमुखैः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकोपवेशनानि करिष्यति। भारतेन नेपाल देशस्य जलाप्लाव प्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलितेषु सहायोद्धार कार्येषु सहायतां कर्तुम् आपदुद्धार सामग्रीः समेत्य द्वे विमाने पुनः प्रेषिते। आपदुद्धार सामग्र्यः नेपालस्य विज्ञान प्रौद्योगिकी नवोन्मेष मन्त्रिणे महावीर पुन इत्यस्मै समर्पिताः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीय स्पर्धायां भारतं हांगकांग दलं 37.1 धावनांकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं, आइए श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सुबह। दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने से पहले ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करेंगे जब तक वे पूरा नहीं हो जाते, यानी कि जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। समय निकल जाने के बाद ये मलाल रह जाता है कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। श्रोताओं, अपने सपनों को अधूरा मत रहने दो, दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करने की दम

लेते रहना होगा। अपनी सफलता के लिए हमें किसी भी की सहायता अगर लेनी पड़े तो अवश्य लीजिए, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ। इसी तारतम्य में हम आपको एक कहानी बताते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां दो अंडे भी दिए। उन अंडों से छोटे छोटे दो बच्चे भी निकल आए। वे सभी उस खेत में मजे से अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ महीने बाद फसल कटाई का समय भी आ गया। सभी किसान अपने अपने खेत की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का ये खेत छोड़कर नए स्थान में जाने का समय आ गया था। एक दिन चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसको खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। चिड़िया के लौटने पर ये सारी बातें उसे सुनाई। चिड़िया के बच्चों ने कहा, माँ आज हमारा अंतिम दिन है, रात में हमें नई जगह जाना ही होगा। चिड़िया ने कहा, इतनी जल्दी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कल फसल की कटाई होगी। अगले दिन ऐसा ही हुआ। किसान खेत में आया और फसल को जस का तस देख बहुत निराश हुआ। ये कहते कहते चला गया कि कल मैं अपने रिश्तेदार को भेजूंगा। किसान की बात फिर बच्चों ने अपनी माँ से कही। माँ ने पुनः कहा, हमें आज रात भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कल उसके रिश्तेदार आएंगे। और अगले दिन भी वैसा ही हुआ। शाम को किसान जब अपने खेत पहुंचा तो खेत में कोई नहीं आया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जाते जाते कहा कि कल मैं स्वयं ही अपने खेत की कटाई करूंगा। किसान की ये बातें जब चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ से कही तो चिड़िया ने कहा कि बच्चों, अब समय आ गया है खेत छोड़ने का, हम आज रात ही ये खेत छोड़ देंगे। चिड़िया के दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि माँ खेत छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने पूछा। चिड़िया बोली, बच्चों पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, उसने अपने और इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वो अवश्य आएगा। उस रात चिड़िया और उसके बच्चे उड़ गए। श्रोताओं, दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि काम समय पर पूरा हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं को ही लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो श्रोताओं, आज बस इतना ही। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। विषय है रासायनिक दवाओं के उपयोग में सावधानी रखें। विशेषज्ञ हैं जीपी विश्वकर्मा।
1: काफी किसान फल और सब्जी लगाते हैं और लगाने के बाद जब कीड़ों का प्रकोप होता है तो तुरंत ही रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने लगते हैं। ये रासायनिक दवाएं निश्चित तौर से जब हमारी फसलों कीड़ों पर प्रभाव डालती हैं तो निश्चित तौर से ये मनुष्य पर जो खाने के साथ ही उस पर भी प्रभाव पड़ता है, इसका निश्चित तौर से असर पड़ता है। क्योंकि कंपनियां भी एक निर्धारित अवधि की सीमा देती हैं कि इसके बाद ही फलों को तोड़ा जाए। तो पहले तो एक किसान, हमारा उनसे निवेदन एक है कि सबसे पहले हम कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हम जैविक दवाओं का उपयोग करें, खासकर जो हमारी मनुष्य

0: उसको खाने वाली जितने भी फल सब्जी हैं उन पर जैविक दवाओं का, जैसे आपका नीम का तेल है, आपका नीम की निबोली है, या अन्य जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, उन दवाओं का, अगर जैविक दवाओं का हम उपयोग करते हैं तो इस पर मानव शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मनुष्य के लिए ये हानिकारक नहीं होती हैं। और इससे क्या होता है, रासायनिक दवा का प्रभाव असर जितना कंपनी ने दिया हुआ उतने समय तक रहता है, और वो दवा उसके साथ मिश्रित रहती है और उन फल सब्जियों में उसका प्रभाव रहता है और वो मनुष्य के शरीर पर पड़ता है, इससे कई प्रकार की बीमारियाँ होने की भी संभावना रहती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी फल और सब्जी लगाने वाले किसान हैं वो पहले ये देख लें कि जब हमें कल जैसे फसल तोड़ना है तो कीटनाशक दवा का प्रयोग उसके 4-5 दिन पहले करें, उन फलों का और सब्जी की तोड़ाई कर लें, फिर मार्केट में आप ले जाएं। और अगर आपको तोड़ना है और अगर दवा डालना भी है तो डालने के पश्चात आप उस समय अवधि का ध्यान रखें जितना समय हमारी कंपनी ने निर्धारित किया है, जो दवा वालों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इसका निर्धारण किया है कि इतने समय के बाद ही इसकी तोड़ाई की जाए, अन्यथा ये नुकसानदेह। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से इसमें कुछ दवाएँ हैं हमारे पास जो इनका प्रभाव सब्जी पर जितने दिन पड़ता है, मैं आपको उसका विवरण दे देता हूँ। जैसे टमाटर पर अगर डाइमिथोएट 30 EC डाली जाती है तो 7 दिन तक इस दवा का इस टमाटर की फसल पर असर पड़ता है। तो दवा डालने के 7 दिन तक टमाटर को ना तोड़, उनके फलों को ले जा करके मार्केट में ना बेचा जावे, ठीक है ना। दूसरी है मेलाथियन 50 EC, ये 3 दिन तक प्रभावी रहती है, 3 दिन तक इसको फलों को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो निश्चित तौर से मानव शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर आता है मिर्च मेलाथियन 50 EC, 2 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। मिथाइल डिमेटोन 25 EC, इसका असर ज़्यादा रहता है, 16 दिन तक रहता है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। जिससे बैगन भटा पर अगर मेलाथियन 50 EC डाली जाती है तो इसका प्रभाव कंपनी ने निर्धारित किया है, जो दवा वालों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इसका निर्धारण किया है कि इतने समय के बाद ही इसकी तोड़ाई की जाए, अन्यथा ये नुकसानदेह। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से इसमें कुछ दवाएं हैं हमारे पास जो इनका प्रभाव सब्जी पर जितने दिन पड़ता है, मैं आपको उसका विवरण दे देता हूँ। जैसे टमाटर पर अगर डाइमिथोएट 30 EC डाली जाती है तो 7 दिन तक इस दवा का इस टमाटर की फसल पर असर पड़ता है। तो दवा डालने के 7 दिन तक टमाटर को ना तोड़, उनके फलों को ले जा करके मार्केट में ना बेचा जावे, ठीक है ना। दूसरी है मेलाथियन 50 EC, ये 3 दिन तक प्रभावी रहती है, 3 दिन तक इसको फलों को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो निश्चित तौर से मानव शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर भटा पर अगर मेलाथियन 50 EC डाली जाती है तो इसका प्रभाव 2 दिन तक रहता है। और मिथाइल डिमेटोन 25, बैगन में मिथाइल डिमेटोन 25 EC 9 दिन तक इसका असर रहता है। और क्यूनाइल फास 25 EC अगर किसान डालता है रासायनिक दवा तो 5 दिन तक इसका असर रहता है। इसी तरह से जब हरी हम प्याज जो बाजार में बेचते हैं सब्जी के लिए, अगर उस पर दवा डाली जाती है जैसे मेलाथियन 50 EC, तो इसका 3 दिन तक प्रभाव रहता है, निर्धारित समय अवधि जहर की।
1: कृषि संकेत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, 7:10 हुआ चाहते हैं, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, धार्मिक पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना को और मजबूत बनाने की योजना। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कल शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में आज जन्माष्टमी का उल्लास, 29 इतिहास

0: से धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर श्री कृष्ण पर्व के आयोजन और प्रदेश में मानसून सक्रिय, पन्ना सतना में नदियों में बाढ़ की स्थिति, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के विस्तार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल गुजरात में द्वारका में भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं देवस्थानों पर सहज एवं सुगम आवागमन, श्रद्धालुओं के ठहरने, उनकी सुरक्षा और पर्यटकों को की वृद्धि को देखते हुए वहां सभी जरूरी अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 20 गुना बढ़ गई है। वर्तमान में लगभग 10 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री उज्जैन आ रहे हैं।
1: जिस प्रकार से तीर्थाटन का मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिसाद मिला है, अकेले उज्जैन में बाबा महाकाल के कारण से बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु दर्शनार्थी लगभग 20 गुना बढ़े हैं। आज की स्थिति में 10 करोड़ से ज्यादा यात्री उज्जैन आ रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी लगातार उस दिशा में काम कर रही है, इसलिए हमारे सभी देवस्थानों पर सुव्यवस्था स्थापित करके यात्रियों के लिए सुगम आवागमन, रहने सहने की व्यवस्था, देवस्थान पे प्रॉपर जो जरूरतें, उन प्रकार के निर्माण कार्य।
0: डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर में एक निजी कंपनी की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट शुरू करेंगे। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह देश की एक ही स्थान पर स्थित सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। यहां 220 केवी से 1200 केवी तक के ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे और हर महीने 35 ट्रांसफार्मर तैयार करने की क्षमता होगी। इकाई से 2000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीहोर में बनने वाले ट्रांसफार्मर देश के साथ वैश्विक बाजारों में भी भेजे जाएंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ये समारोह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आरसीवीवी वीपी नरोहना प्रशासन एवं प्रबंधक की अकादमी भोपाल में होगा। इस अवसर पर उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, शैक्षणिक नवाचारों को बढ़ावा देने और विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा। समारोह में विगत वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दो शिक्षकों शीला पटले और भेरूलाल ओसारा को समारोह में शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र तथा सम्मान राशि प्रदान कर विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बना है। जन्मोत्सव को लेकर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला को फूल बंगले की तर्ज पर भव्य रूप से सजाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बार भी प्रतिवर्ष की तरह सपरिवार रात 12 बजे होने वाली महाआरती में शामिल होंगे और भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करेंगे। पन्ना में भगवान जुगल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान जुगल किशोर सरकार का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। प्रदेश के 29 ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर श्री कृष्ण पर्व के आयोजन रखे गए हैं। आयोजन उज्जैन के सांदीपनी आश्रम और नारायण धाम धार के अमझेरा तथा रायसेन के जामगढ़ जैसे श्री कृष्ण से जुड़े प्रमुख स्थलों पर विशेष कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में मटकी, बांसुरी, श्री कृष्ण की झांकी और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मुरैना में श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में भव्य मटकी फोड़ महोत्सव में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों की गोविंदा टोलियां भाग लेंगी। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह

को जियोसिंक्रोन्स कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ईओएस 5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी। इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। भारत ने हांगकांग में चीन के खिलाफ गुरुवार को महिला एशिया कप 2026 के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की। इसी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ बतौर सलामी जोड़ी 48 गेंदों में 74 रन की साझेदारी की। इसके जवाब में चीन 16 ओवर में 2 गेंदों में सिर्फ 56 रन पर सिमट गई। शीर्ष स्थान पर बने रहते हुए भारत 5 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा। वहीं पाकिस्तान अपना पहला मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। एम्प्लॉयज प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने योग्य संस्थानों से विश्वास 2026 पहल के तहत ईपीएफ से जुड़े नुकसान के लंबे समय से लंबित विवादों को काफ़ी कम दरों पर निपटाने का आग्रह किया है। प्रदेश में खजुराहो पन्ना सतना सहित पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। कल 9 स्थानों पर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। खजुराहो एयरपोर्ट पर 178, पन्ना में 164, रामपुर बागेलान में 130, अमरपाटन में 129, देवनगर में 128, मझगांव में 122 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि छतरपुर सागर रायसेन नरसिंहपुर सिवनी और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर और बालाघाट समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। पन्ना जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अमानगंज में मिढ़ासन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पन्ना की पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने बताया कि किलकिला नदी के विकराल रूप से जलमग्न हुए धाम मोहल्ले में फंसे 12 लोगों को राज्य SDRF और पुलिस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। डायल 112 के माध्यम से नगर में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया है। नदी घाट के पास स्थित निचले इलाकों के परिवारों से तुरंत मकान खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है। प्रभावित परिवारों के लिए स्थानीय कन्या स्कूल और बॉयज स्कूल में राहत शिविर बनाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के युवा बुंदेली गायक सुनील लोधी को 1,00,000 रुपए की सम्मान निधि, बेहतर इलाज, आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक सहयोग और औपचारिक संगीत शिक्षा में मदद देने की घोषणा की है। धार जिले के जनपद पंचायत मनावर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय युवा संगम एवं उद्यम संवाद में 50 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 17 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ। डिंडोरी में आपदा मित्र योजना अंतर्गत 7 दिवसीय प्रशिक्षण का कल शुभारंभ हो गया। झाबुआ के पेटलावर क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए कुल 12,50,00,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आगरमालवा जिला एवं जल एवं स्वच्छता मिशन में कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने हर घर नल से जल समूह का जल प्रदाय योजना के कार्यों का प्लान तैयार कर 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर जिले के 4 मंदिरों में मंदिरों पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन आज किया जाएगा। शिवपुरी में सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण भजन संध्या होगी। इंदौर जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने इंदौर जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर सुने। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चोर मचाए शोर का ये नगमा, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदा

अनंत मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर और उनके परिवार के सभी लोग, भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है हेमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू और उनके परिवार के सभी लोग। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम कोहका, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या साहू और उनके परिवार के सभी लोग। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहते हैं गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर और उनके सभी मित्रगण। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म चोर मचाए शोर का ये नगमा। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं 1965 में बनी फिल्म आरजू का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हजरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा और उनके परिवार के सभी लोग, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नू गोस्वामी और उनके परिवार के सभी लोग। ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद रफीक पंवार, बेनजीर कौसर मोहम्मद, साकिब पंवार, तलमास बानो पंवार, मोइन छोटू पंवार, शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, मोहम्मद हसनैन पंवार और उनके सभी मित्रगण। इसी गीत को सुनना चाहते हैं संबलपुर कांकेर से फग्गू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और उनके सभी मित्रगण। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे 1965 में बनी फिल्म आरजू का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और आइए श्रोता, हम अब सुनते हैं 1962 में बनी फिल्म 20 साल बाद का ये गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना है शकील बदायनी की और संगीत हेमंत कुमार का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता वारणा शहापुर तहसील पनहाला जिला कोल्हापुर से विजय चौहान इंदुकर, तेजस्वी चौहान माई इंदुरकर, अंकिता चौहान, अनिकेत चौहान और उनके परिवार के सभी लोग, विलगे गांव पुणे से अंबिका कांबले सौदापुरकर, विजय कांबले सौदापुरकर, बेबी शौर्या श्रेयांश और उनके परिवार के सभी लोग, कल्याण मुंबई से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है डॉक्टर सूरज सुरवे, नमिता सुरवे, प्रकाश सुरवे और उनके सभी मित्रगण, घाट कूपर मुंबई से इसी गीत को सुनना चाहते हैं वैभव चौहान, आभीर चौहान, भीमराव चौहान, सुजाता चौहान और उनके परिवार के सभी लोग इसी गीत को सुनना चाहते हैं दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मेगलानी, बबीता मेगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दीक्षा कृष मूरत और उनके सभी मित्रगण इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिल्हा नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभ प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल और उनके सभी मित्रगण इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार।

अभी आप सुन रहे थे 1962 में बनी फिल्म 20 साल बाद का नकमा, आवाज थी हेमंत कुमार की। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था चित्रगुप्त ने और पसंद करने वाले श्रोता थे बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, सौर्य नामदेव और उनके परिवार के सभी लोग, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू, बबीता, सुभाष, बन्ने बुजुर्ग, पलेरा टीकमगढ़ से सिगीत की फरमाइश हम लिख भेजी थी, ब्रजेश विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा और उनके परिवार के सभी लोग, संबलपुर से इसी गीत को सुनना चाहते थे ज्योति ओजस्वी और उनके परिवार के लोग, भवरपुर बसना से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी राधे, श्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा देवांगन, राजू देवांगन, जगदीश देवांगन और उनके परिवार के सभी लोग, इसी गीत को सुनना चाहते थे गौर झामर जिला सागर से कुंदन लाल चौरसिया निर्मोही, अंबिका प्रसाद चौरसिया, विवेक कुमार चौरसिया, वीरेंद्र कुमार चौरसिया, देवव्रत चौरसिया, कार्तिक आराध्य चौरसिया, नैवेद्य चौरसिया, मनोज कुमार चौरसिया, मानस चौरसिया और उनके परिवार के सभी लोग, इसी गीत के साथ मन चाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:45 हुए हैं। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।

नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना पिछले प्रकरण में मिट्टी के प्रयोगों के विषय में जो कुछ मैं लिख चुका हूं उसके जैसा मेरा आहार विषयक प्रयोग भी था, इसलिए इस संबंध में भी इस समय यहां थोड़ा लिख डालना मैं उचित समझता हूं। दूसरी कुछ बातें प्रसंगानुसार आगे आएंगी। आहार विषयक मेरे प्रयोगों और तत्संबंधी विचारों का विस्तार इस प्रकरण में नहीं किया जा सकता। इस विषय में मैंने आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान नामक जो पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के लिए लिखी थी उसमें विस्तार पूर्वक लिखा है। मेरी छोटी छोटी पुस्तकों में ये पुस्तक पश्चिम में और यहाँ भी सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। मैं आज तक इसका कारण नहीं समझ सका हूँ। ये पुस्तक केवल इंडियन ओपिनियन के पाठकों के लिए लिखी गई थी, पर उसके आधार पर अनेक भाई बहनों ने अपने जीवन में फेरफार किए हैं और मेरे साथ पत्र व्यवहार भी किया है, इसलिए इस विषय में यहां कुछ लिखना आवश्यक हो गया है। और अब इससे आगे, क्योंकि यद्यपि उसमें लिखे हुए अपने विचारों में फेरफार करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं हुई, तथापि अपने आचार में मैंने जो महत्व का फेरफार किया है उसे इस पुस्तक के सब पाठक नहीं जानते। ये आवश्यक है कि वे उस फेरफार को तुरंत जान लें। इस पुस्तक के लिखने में अन्य पुस्तकों की भांति ही केवल धर्म भावना काम कर रही थी और वही आज भी मेरे प्रत्येक काम में वर्तमान है, इसलिए उसमें बताए हुए कई विचारों पर मैं आज अमल नहीं कर पाता। इसका मुझे खेद है, इसकी मुझे शर्म आती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य बालक के रूप में माता का जो दूध पीता है उसके सिवा उसे दूसरे दूध की आवश्यकता नहीं है। हरे और सूखे वन पक्व फलों के अतिरिक्त मनुष्य का कोई और आहार नहीं है। बादाम आदि चीजों में से और अंगूर आदि फलों में से उसे शरीर और बुद्धि के लिए आवश्यक पूरा पोषण मिल जाता है। जो ऐसे आहार पर रह सकता है उसके लिए ब्रह्मचार्य आदि आत्मसंयम बहुत सरल हो जाता है। जैसा आहार वैसी डकार, मनुष्य जैसा खाता है वैसा बनता है, इस कहावत में बहुत सार है। उसे मैंने और मेरे साथियों ने अनुभव किया है। इन विचारों का विस्तृत समर्थन मेरी आरोग्य संबंधी पुस्तक में है, पर हिंदुस्तान में अपने प्रयोगों को संपूर्णता तक पहुंचाना मेरे भाग्य में बदाना था। खेड़ा जिले में सिपाहियों की भर्ती का काम करते करते मैं अपनी भूल से मृत्युशैया पर पड़ा। दूध के बिना जीने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे। जिन वैद्यों, डॉक्टरों और रसायन शास्त्रियों को मैं जानता था उनकी मदद मांगी। किसी ने मूंग के पानी, किसी ने महुए के तेल और किसी ने बादाम के दूध का सुझाव दिया। इन सब चीजों के प्रयोग करते करते मैंने शरीर को निचोड़ डाला, पर उससे मैं बिछोना छोड़कर उठ न सका। वैद्यों ने मुझे चरक इत्यादि श्लोक सुनाकर समझाया कि रोग दूर करने के लिए खाद्य खाद्य की बाधा नहीं होती और मांसादि भी खाए जा सकते हैं। ये वैद्य दुग्ध त्याग पर दृढ़ रहने में मेरी सहायता कर सके ऐसी स्थिति ना थी। तब जहां बीफ टी और ब्रांडी की गुंजाइश हो वहां से तो दूध के त्याग में सहायता मिल ही कैसे सकती थी। गाय भैंस का दूध तो मैं ले ही नहीं सकता था, ये मेरा व्रत था। व्रत हेतु तो दूध मात्र का त्याग था, पर व्रत लेते समय मेरे सामने गोमाता और भैंस माता ही थी। इस कारण से तथा जीने की आशा से मैंने मन को जैसे तैसे फुसला लिया। मैंने व्रत के अक्षर का पालन किया और बकरी का दूध लेने का निश्चय किया। बकरी माता का दूध लेते समय भी मैंने ये अनुभव किया, मेरे व्रत की आत्मा का हनन हुआ है। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर।

0: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
0: News on AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: News on AIR।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें यार आती हैं।
2: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजा चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSP-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात

0: निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं भगवान सिंह और साथियों की गाई ये भक्ति रचना।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: इस अंतराल के बाद नई श्रोता अब सुनते हैं देवकी नंदन सकवार और साथियों की आवाजों में ये कृष्ण जन्म भक्ति रचना।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: इस अंतराल की बधाई श्रोताओं, आप सुनते हैं कैलाश खरे अलंकार की आवाज में ये कृष्ण भक्ति रचना।

कैलाश खरे अलंकार की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब समय हुआ है कार्यक्रम रूपक का। अब सुनते हैं रूपक जन्मे कृष्ण कन्हैया। प्रस्तुति है डॉक्टर शांति जैन की।

वो युग था जब धरती भय से कांप रही थी, कंसराज का खौफ भरा था दिशा दिशा में। सहोदरा देव की बंदनी थी कारा में, भग्नीपति वसुदेव संग दुख झेल रहे थे। सात पुत्र के प्राण कंस ने छीन लिए थे।

टूक टूक था हुआ कलेजा मात पिता का, धरती रोती थी, अंबर भी मौन खड़ा था, पर पातक का अंत एक दिन तो होना था।

वही एक क्षण आलोकित हो गई दिशाएं, बद्ध बेड़ियां टूट गई थी, प्रहरी निद्रा मग्न हुए थे, बंद द्वार खुल गए आप ही, ऐसे सुत के प्राण बचाने उठे पिता गोकुल जाने को, पर जमुना जमुना तो उफन रही थी और उधर मेघों का वर्षण, सर पर रखी टोकरी में सुत नंदगांव वसुदेव चले हैं। कैसा ये आश्चर्य, कृष्ण के पांव परसते ही ये जमुना शांत हो गई। सिमट गई जमुना की लहरें, सहज भाव से पहुंच गए वसुदेव यशोदा मैया के घर। गोकुल में एक भोर हो गई, सारी दिशा विभोर हो गई, गली गली में बजे बधावे, खुशियां आज किशोर हो गई।

किसी अकिंचन को जैसे हीरा मिल जाए, अंधे को आंखें, वंध्या को सुत मिल जाए, मिला यशोदा को अनमोल रतन उस जैसा, बाल रूप में वो तो लीला पुरुषोत्तम था, माँ की नजरों में पर केवल कृष्ण कन्हैया, झूले में सोता माता की लोरी सुनता, हंसता रोता पुलक पुलक किलकारी भरता, सारे जग का पालक देखो देखो आज पालने बीच खेल

लीलाधर की लीला कौन जान सकता है। कहने को कान्हा सुत नंद यशोदा के थे, लेकिन वे तो संप्रभु थे। वे ज्योति पुंज थे, दिव्य रूप थे, सार्वभौम स्वामी थे। उनके चरण शरण में जग सारा था। फिर भी बालक बनकर लीला भांति भांति की करते फिरते, छींकों से माखन की चोरी, छेड़छाड़ ग्वालन की छोरी, कालिय मर्दन करने वाले, गोवर्धन कर धरने वाले, वन वन गाय चराने वाले, वंशी मधुर बजाने वाले, नंदलाल का ऐसा बचपन हरने वाला था सबका मन।

विराट रूप सृष्टि समाहित जिनमें कृष्ण सूर्य, कृष्ण सोम, कृष्ण अग्नि, कृष्ण पवन, कृष्ण पुष्प, कृष्ण अश्म, सागर में, पर्वत में, धरती पर, अंबर में, हास रुदन सुख दुख में, दिशा दिशा कण कण में, कृष्ण ही विराज रहे, कृष्ण ही विराज रहे।

द्वापर युग में मुरली वाले ने दुनिया के दुख मिटाए। इंद्रदेव का गर्व चूर्ण कर ब्रजवासी के प्राण बचाए। आओ कान्हा, फिर से उतरो आसमान से इस धरती पर, कर्म भूमि में कर्म सिखाने। आओ फिर से तुम इस भू पर, भारतवासी तुम्हें बुलाते, उनकी आज पुकार सुनो तुम। प्रजा त्रस्त है, अब उनका उद्धार करो तुम, अब उनका उद्धार करो तुम, अब उनका उद्धार करो तुम।

0: एकड़ में स्थापित यह देश की एक ही स्थान पर स्थित सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में कहा कि सरकार
1: अभी आप सुन रहे थे रूपक जन्मे कृष्ण कन्हैया, प्रस्तुति थी डॉक्टर शांति जैन की। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे तरुण सागर मेंडोंसा और लॉय में
1: बजने को है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ओ रोमियो। इस फिल्म का गाना गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज़।

दोस्तों आज 4 सितंबर है, आज है ऋषि कपूर जी का जन्म दिवस। हालांकि भौतिक रूप से वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कला के माध्यम से हमारे दिलों में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। ऋषि कपूर जी एक सदाबहार अभिनेता थे और सिने जगत में सदा प्रासंगिक रहे थे और रहेंगे भी। तो चलिए उन्हीं की फिल्म का एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, और अमिताभ बच्चन ने संगीतबद्ध किया है इस गाने को।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना। श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों आज संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी का जन्मदिवस है। वे अपने सुरीले संगीत के लिए जाने जाते थे और उनका संगीत सुरीला भी होता था और अनूठा भी। आइए उनकी ही फिल्म का एक गाना सुनते हैं, आपको सुनवा रहे हैं राजनीति फिल्म का गाना। आदेश श्रीवास्तव, रोजाली निकोलसन और शशि ने गाया इसे। समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओ, आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की आवाज़ों में गदर 2 फिल्म से सईद कादरी के हैं बोल और मिथुन की है तर्ज़।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक सजीले बांके नौजवान की।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके।

4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजतपट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इस गाने में काम किया था। हमें पता है कि जब आप ये गाना सुनेंगे, आपके मन में रजतपट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी।

0: ऋषि कपूर ने बताया था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए, पर पानी में चलते हुए आंखों पर जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर रोने लगते थे, इसलिए वो शूटिंग को आनाकानी कर रहे थे। तभी नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने चॉकलेट का लालच दिया। 3 बरस के ऋषि कपूर चॉकलेट के लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: एक कस्सा दादाजी ने सुनाया था, जोकर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। तो मैं तो बच्चा था, 70 में 18 साल का था, तो अवार्ड मिला तो मैं पापा के पास गया, पापा को मैंने दे दिया अवार्ड। तो बोला तुम जा दादा के पाँव में रख दो। तो मैं गया दादाजी को मिलने, दादाजी ने बहुत प्यार किया, मैंने वो बोला मैंने जीता है और मैंने उनके पाँव में रख दिया। दादाजी वहाँ फूट फूट के रोने लगे। मुझे उस वक्त उस सेंटेंस की गहराई का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे चूमा माथे पर, कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया।
0: बतौर हीरो ऋषि कपूर सन 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए रजत पट पर आए थे, पर यह कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। यकीन मानिए ये सब अचानक हुआ था।
1: जोकर पिक्चर नहीं चली, फर्स्ट पार्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो मैं उसमें एक एडोलेसेंट बॉय था। तो पापा बना रहे थे एक यंग स्टोरी, लव स्टोरी, सही मानू में टीनेज लव स्टोरी बॉबी के रूप में। तो उन्हें एक बॉबी अपनी हीरोइन की तलाश थी। तो जब डिम्पल को शॉर्टलिस्ट किया तो मुझे भी कहा गया कि भाई तुम भी रिड्यूस करो, तुम भी वेट कम करो, मैं तुम्हें लूंगा हीरो। पिक्चर बन रही थी बॉबी, बॉबी कौन था? डिम्पल। मेरे लिए जैसे आज की तारीख में जैसे जो भी हीरो के बच्चे होते हैं तैयार किया जाता है फिल्म में हीरो बनने का, तो वो घोड़े में एंट्री करते हैं या मोटरसाइकिल में एंट्री करते हैं, वो वैसे कुछ नहीं था। मैं बाय डिफॉल्ट हीरो था। पिक्चर तो टाइटल रोल तो डिम्पल की थी, डिम्पल वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म। मैं बाय चांस मुझे लिया गया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि राज कपूर साहब ने घर में बैठा बैठा के वो ले लिया पिक्चर में। उन बीच में पिक्चर खत्म हुई, डिम्पल की शादी हुई, वो इंडस्ट्री छोड़ गई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हो गई, पूरा क्रेडिट मैंने खा गया, मैं हो गया बन गया एक्टर।
2: नशा

किसे पता था कि बॉबी के जरिए सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखने वाला ये क्यूट सा लड़का आगे चलकर एक लंबी और रूमानी पारी खेलेगा। दरअसल ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा

जी हाँ, सबसे हिट और सबसे रूमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की जरूरत होती है, एक ऐसे नायक की जरूरत जो दुनिया की तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा उद्योग की इन जरूरतों के लिए ऋषि कपूर 70 के दशक में वरदान बन गए थे। सन 1975

दिलचस्प बात यह है कि डिंपल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में।

ऋषि कपूर और नीतू सिंह लव आजकल, दो दूनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों में शुरुआती फिल्मों के समय दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। एक बार ऋषि कपूर मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे, नीतू की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 बरस के ऋषि कपूर और 21 बरस की नीतू सिंह 22 जनवरी 1980 को परिणय सूत्र

इसके बाद राज साहब की अधूरी छूटी फिल्म हिना में उन्होंने काम किया, जिसे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था। मेरे जाने में से

बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर फिल्मों में काम तो करते रहे पर वो असरदार फिल्में नहीं थीं। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा की चांदनी।

कहा जा सकता है कि हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ ऋषि कपूर ने काम किया, फिर चाहे डिंपल हूं, नीतू सिंह हूं या टीना मुनीम।

अपने लंबे करियर में हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में अपने सजीले स्वेटर्स में नजर आते रहे ऋषि कपूर। सोचे

0: तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम, साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई।
1: ये मातम क्यों मनाया हुआ है? मैं महारानी में जिंदा हूँ, जाओ जाओ उसे देखो खेलते हुए, जाओ जाओ जाओ तुम सब जाओ, ये ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम जाओ जाओ देखो उसे खेलते हुए, आखिर मेरे नाम मेरी इज्जत से तो खेल रहा है वो, जाओ तुम लोग सब जाओ, जाओ से मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं, ये लोग भी मेरे नहीं, लेकिन ये घर मेरा है, जमीन पे नहीं पीठ पे खड़ा किया इसे, और इन्हें कोई हक नहीं के मेरे सीने पे पैर रखे, दफा करें सबको।
0: साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ के रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी।
2: हाँ, यही कमरा है जहाँ सुनाई गई थी कहानी, और यहीं मैंने उनसे कहा था कि तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम पिक्चर फ्लॉप करा दोगे मुझे लोग ऐसे रोल में, मेरी इमेज क्या है, मेरी छाप क्या है, और तुम मुझे क्या देना चाहते हो? नहीं नहीं सर, आप तो बेहतरीन करें, बेहतर करें, ऐसे वो करूँगा तो सही, मुझे भी मालूम है अच्छा एक्टर मैं करूँगा सही, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए, तो मैंने ना ना करके उसको नकार दिया, मैंने बोला चले जाओ सर, देखो मैंने, उन्होंने हार नहीं मानी, एक महीने लगातार करण जौहर साहब और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे पिक्चर के, लगातार मेरे पीछे बने रहे कि आपको तो करना ही पड़ेगा। सही बात यह कमल जी, मेरे में एक्चुअली साहस यानी कि हिम्मत नहीं थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे रोल करने का, मैंने सोचा कहीं मैं कर लूँ और मेरे कारण पिक्चर ना चले तो लोग बोलेंगे देखो पिक्चर फ्लॉप हो गई ऋषि कपूर की वजह से, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई किसी को नुकसान हो, मैं जानता हूँ कि एक्टर मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मैं निभा लूँगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप, तो मैं एक्चुअली सही मानों में उससे डर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो जब बहुत दबाव आया तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि अच्छे काम करते हैं, एक लुक टेस्ट लेते हैं, यानी कि देखते हैं वो कैसा दिखेगा मेरे में, तो एक कच्चा पक्का हमने लुक टेस्ट लिया, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी हिम्मत बनी, थोड़ा मैंने कहा अच्छा तो मुझे कुछ सीन्स भी सुनाएंगे, फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत की और फिर मैंने बोला चलो भाई करते हैं देखते क्या होता है। अब जब फिल्म मुकम्मल हो गई, पिक्चर चल गई, हिट भी हो गई, कुछ बहुत लोगों ने हमारी भी तारीफ की, एक आध अवार्ड भी मिल गया, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है ये दोनों करण जौहर और करण मल्होत्रा का है, अगर उनका दबाव नहीं होता, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऋषि कपूर ही कर सकता है रोल, तो ये मुझे कभी रोल नहीं मिला होता, ये मैं उल्टा उनकी सोच को मैं दाद देता हूँ कि उनने कैसा सोचा कि ऋषि कपूर कर सकता है।
3: लाला मेरा नाम है, रौफ लाला, ये तो तू भूलेगा नहीं, एक पल के लिए मैंने तुझे जहन्नम की याद दिला दी थी,
2: तो ये अवार्ड सही मानों में उनका है, मेरा नहीं। हाँ, मेरी मेहनत थी, उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी एक फोरसाइट थी, आगे की एक सोच थी कि ऋषि कपूर सही है, मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जाए ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा।
0: साल 2018 में उन्होंने उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट में काम किया, इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। लगभग इन्हीं दिनों में आई थी फिल्म डी डे, एक ऐसी फिल्म जिसमें इरफान खान और ऋषि कपूर एक साथ नजर आते हैं।
1: एक बात बताओ, कैप्टन कौन है तुम दोनों में, ये या तुम? ये तो फौजी है, अकल से ज्यादा हाथ पैर चलाता है, तुम समझदार लगते हो, बात करते हैं चलो। वो एक फोन करना था।
4: अब में से कोई सौदा करने वाला दिखता है?
1: अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से।
4: अगर ये बात झूठ है, खुदा की कसम मैं यहाँ पे गोली मारूंगा।
5: वली तू इसके बातों में मत आया, झूठ बोल रहा है।
0: इस दौर में भी ऋषि कपूर ने कई फिल्में की, 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स में उनका अभिनय लाजवाब था, 2018 में फिल्म मुल्क में उनके किरदार की खूब तारीफ हुई, साल 2017 में ऋषि कपूर की आत्मकथा आई खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया, सन 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में भूमिका के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन 1974 में अपनी पहली ही फिल्म बॉबी में उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। साल 2008 में फिल्मफेयर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर को फिल्मफेयर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था साल 2011 में फिल्म दो दूनी चार के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार 2017 में उन्हें मिला फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए। 30 अप्रैल 2020 का दिन था जब मुंबई में 67 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे अपने परिवार, अपनी फिल्मों, अपने गानों और अपने दीवानों को छोड़कर चले गए। जमाना उन्हें एक खुशनुमा और चंचल अभिनेता के तौर पर हमेशा याद करेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर से बात कर रहे हैं।
0: मैहर से? भाई मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई व्यवस्था?
2: क्रेताओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक लोक कल्याण मेला आयोजित किया जा रहा है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष मेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन संचालित किया गया। इस दौरान 118 कुल वारंटियों की गिरफ्तारी भी की गई। अवैध शराब के परिवहन, विक्रय एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए 16 प्रकरण आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए तथा संबंधित आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। कटनी में रक्षाबंधन पर्व पिछले दिनों संपन्न हुआ। बारडोली उत्सव समिति द्वारा गाटर घाट में 2 दिवसीय कजलिया मेले का आयोजन हुआ। कटनी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा कनेक्ट संवाद के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, युवा एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक बड़ी संख्या में शामिल हुए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के तहत नगर पालिक निगम कटनी द्वारा स्वच्छता के प्रति नागरिकों एवं सफाई मित्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। महिला समूह के साथ जनसंवाद एवं बैठक आयोजित की गई। सफाई मित्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सुरक्षित एवं बेहतर स्वच्छता कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया। कटनी

में आपदा मित्र योजना के अंतर्गत 150 स्वयंसेवियों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, आकाशीय बिजली, चक्रवात, बादल फटना एवं सूखा आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कटनी में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 बीबीजी रामजी के अंतर्गत जिला स्तरीय पंच सम्मेलन सम्पन्न हुआ। विधायक बड़वारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने कहा कि ग्राम का विकास प्लान तैयार करते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों और वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता से कराया जाए। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विकसित भारत जी रामजी योजना के कानून, नियमों और प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कटनी जिले के सभी 1713 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की वृहद कार्य योजना कटनी महिला बाल विकास विभाग ने तैयार की है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए प्ले स्कूल की तरह पजल गेम, खिलौने, कठपुतली और स्मार्ट गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। समग्र ई केवाईसी अभियान में कटनी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गर्भवती धात्री माताओं, अन्य महिलाओं व किशोरियों को पोषण मटका सजाकर पोषण आहार के महत्व के बारे में जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाएगी। इसी के साथ कटनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं जफर हुसैन खान और वजाहत हुसैन खान की आवाजों में अमीर खुसरो का ये कलाम।

और वजाहत हुसैन खान की आवाज़ों में ये कव्वाली। कलाम था अमीर खुसरो का। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं वाणी जयराम की आवाज़ में सुदर्शन फ़ाकीर का ये कलाम। इसे हमने परवाज़ एल्बम से लिया है। धुन बनाई है मुरली मनोहर स्वरूप ने।

वाणी जयराम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन फकीर का ये कलाम। धुन बनाई थी मुरली मनोहर स्वरूप ने। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं महबूब खान और साथियों की आवाजों में अनजान सागरी का ये कलाम।

महबूब खान और साथियों की गाइस कव्वाली के साथ ही गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मीरा का मोहन का ये नगमा, अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू और साथियों की आवाजों में। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अरुण पौडवाल ने और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और उनके परिवार के सभी लोग। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा और उनके सभी मित्रगण। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और उनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

मीरा का मोहन का ये नगमा। शब्द रचना थी इंदिवर की और संगीत अरुण पौडवाल का। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी का ये गीत। फिल्म का नाम है उजाला और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज वर्मा, आयुषी रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राम कुमार बोड़ाना और राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप और उनके परिवार के सभी लोगों ने। पाकुड़ झारखंड से इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किस्सु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और उनके मित्रगण। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से इसी गीत को सुनना चाहते हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और उनके सभी मित्रगण। ग्राम बाधामूड़ा मोखा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, यहीं से गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन और उनके परिवार के सभी लोग इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मोताला महाराष्ट्र से इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सोलरकर की। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

0: पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं
1: तो
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। और आई श्रोता हूँ, आप सुनते हैं फिल्म प्यार का मौसम का ये नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मजरूह के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है RD बर्मन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी और उनके परिवार के लोग। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया और उनके सभी मित्रगण। मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और उनके सभी मित्रगण। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: इस अंतराल के बाद पुनः एक बार स्वागत है आपकी पसंद कार्यक्रम में, और आई श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म जवानी दीवानी का ये नगमा, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गांव खारिया ढाणी, जिला सिरसा, हरियाणा से सतबीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजारनिया और उनके परिवार के सभी लोग। ग्राम पंचायत काले गांव जफराबाद से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख,

कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख और समस्त राजे जाधव देशमुख परिवार। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, स्वीट अंशुमन बेबी ओबी और उनके परिवार के सभी लोग। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम, इंदिरा और सार्थक वर्मा। करणवीर हाउस भूचो कैचीबा बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप प्रिंसु एकम दमन अभिजोत और उनके परिवार के सभी लोग। आप सभी सुनने वाले हैं करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब से। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सौगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देवकी रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन और उनके सभी मित्रगणों ने। तो आइए सुनते हैं।

किशोर कुमार और आशा भोसले की गाय फिल्म जवानी दीवानी के इस नगमे के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
0: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
0: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
0: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी की
2: जी।
0: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
0: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
0: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षक

0: क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी श्रोताओं, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
0: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओं, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में
1: जी। देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
0: जी।
1: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
0: जी।
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा।
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें, यानी सत्यानंद स्टोक्स को, हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
1: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
0: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओं, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
0: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो

0: गिरिधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरिधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का श्रृंगार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदाबाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
6: दासी।
7: जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
7: जी महाराज।
5: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
7: जो आज्ञा महाराज।
5: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
7: रानी सा की जय हो।
8: आओ सखी, भीतर आओ।
7: जी, वो
8: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग रही हो।
7: वो कुछ नहीं।
8: कहो ना सखी, क्या बात है?
7: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
8: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
7: पर हमें तनिक शंका होती है।
8: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
7: रुकिए रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विष हुआ तो?
8: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो सो

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता,

0: चुना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
1: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
2: अरे छोड़ना ही था
3: और काय, विधवा होकर नाचनो गानो
2: और क्या।
1: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
4: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
1: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम।
11: जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
12: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
11: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
13: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
11: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
1: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
11: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते।

0: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
1: हम स्त्रियों से नहीं मिलते।
2: क्या सच गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
3: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
2: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थीं।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मिड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती है।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: इतनी मधुर आवाज़।
3: हाँ।
2: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
2: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ, बहुत सोना हो
3: जाएगा।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

0: খাও।
1: তুম ভি লোগ খাও মিঠাই, ये लो तुम भी लो।
2: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
3: मैं भी
4: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
1: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
5: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
6: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
1: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
6: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
1: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
6: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
2: हाँ, ये बात तो ठीक है,
6: हो गई दुगनी।
4: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
1: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
6: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
1: हाँ, 60 किलोग्राम है।
2: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
1: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
4: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
2: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम। अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
5: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
7: 300 किलोग्राम
5: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है।
1: और चींटी की मम्मी,
2: उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
6: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
5: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो?
1: तुम छोटे डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
2: हाँ, कहिए 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 11:30 होने को है। आयुष श्रोता, हम अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

अनूप जलोटा के संगीत निर्देशन में राजेश जौहरी का लिखा एक भक्ति पद सुनिए, आवाज पामेला सिंह की है।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आज का ये कार्यक्रम हमने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है। आइए एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी रंग वाला मीराबाई का भक्ति पद आपको सुनवाते हैं, श्याम माने चाकर राखू जी। इसमें मीरा कृष्ण से कहती है कि मुझे अपना सेवक बना लो।

मैं वृंदावन में रहकर तुम्हारे दर्शन कर सकूं और तुम्हारी लीलाएं गा सकूं। दोस्तों, ये पद राजस्थानी रंग वाले अत्यंत मधुर पदों में गिना जाता है।

और आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये भक्ति पद। हय्याम साहब का संगीत है और स्वर मोहम्मद रफी का।

ग्यावस थी मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम में अगला भक्ति पद हमने एमएस सुबुलक्ष्मी की आवाज में आपके लिए चुना है। ये भक्ति पद संत मीराबाई का है।

मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, संत मीराबाई का लिखा भक्ति पद अभी आपने सुना MS सुबुलक्ष्मी की आवाज में। दोस्तों, भगवान कृष्ण को हम सभी ने अपनी अपनी नजरों से देखा, चाहे राधा हो, मीराबाई हो, रुक्मणी हो, गोपियां हो, ग्वाले हो, सभी ने कृष्ण को देखा, चाहा, अपनी अपनी नजर से समझा। लेकिन संत सूरदास ने भगवान कृष्ण को कैसे चाहा, कैसे समझा? सूरदास की दृष्टि में कृष्ण का नाम ही वो मधुर संगीत है जिसमें डूबकर भक्त संसार के सारे दुख भूल जाता है। संत सूरदास ने अपने पदों में बाल कृष्ण की नटखट छवियों से लेकर उनके दिव्य और करुणामय स्वरूप तक कृष्ण को प्रेम के हर रंग में देखा है। और संत सूरदास के लिए कृष्ण केवल आराध्य नहीं, बल्कि उनके जीवन की आंखें और उनके हृदय की ज्योति थे। तो आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में संत सूरदास का ये भक्ति पद।

जो हर हृदय तक पहुंचती थी। और कहते भी है ना कि जब श्याम अधरों पर बांसुरी रखते हैं तो वृंदावन की गलियां भी जो है महक उठती हैं, और ऐसे में सभी का जो मन है वो ठहर सा जाता है, है ना। शायद इसीलिए आज भी जब कोई स्वर गूंजता है, श्याम तेरी बांसुरी पुकारे राधा नाम, तो लगता है कि प्रेम की वही अनंत पुकार आज भी हमारे मन के वृंदावन में गूंज रही है। तो इसी मधुर बांसुरी की तान के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। इस गीत के साथ, फिल्म का नाम है गीत गाता चल, आवाजें आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: रंग तरंग
1: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country.
1: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है राष्ट्रीय।

0: सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अभिनेता ऋषि कपूर को और गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी की बोल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म का नाम है बॉबी।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था कभी कभी। साहिर लुधियानवी के बोल थी, खय्याम साहब का संगीत था। और अब लेते हैं इस कार्यक्रम में एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम कर्ज़।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम का अगला गीत शिव हरि का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और विनोद राठौड़ की आवाजें। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंखें। गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है और धुन आदेश श्रीवास्तव की है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में हम आपको समीर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है राजनीति। आवाजें आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की।

ये आवाजें थी आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की। फिल्म का नाम था राजनीति। गीतकार थे समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम अभी उपस्थित होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं आज फिर। और आज इस सफर में हम थोड़ा सा कवितामय हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, आप समझ गए मेरा इशारा, क्योंकि संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे लिखे गए हैं दोस्तों, जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है, भावों की गहराई है। और आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे वही गीत, कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत जिनमें हिंदी कविता अपनी पूरी गरिमा और मधुरता के साथ खिल उठी है। तो आइए शब्दों और सुरों के इस खूबसूरत संगम में हम खो जाते हैं और चलते हैं इस सुरीले सफर पर। हमारे दोस्तों ने कहा है कि आज वही इबारत मंदाकिनी जी ने लगता है रात भर जाकर लिखी है, हम इसे कैसे पढ़ पाएंगे, इसका जवाब देने में तो हमें घंटों लग जाएंगे। तो आपको इस इबारत का जवाब देने के लिए कहा किसने था, ये बताइए। हम तो आपसे दो सवाल करेंगे, उसका जवाब आपको देना है, और इबारत पढ़कर आपके दिलो दिमाग में जो विचार आए वो लिखने हैं। तो इबारत पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लगा होगा मुझे लगता है। चलिए हम टुकड़ों में आज इसे पढ़ते हैं, क्योंकि सफर लंबा है और हमें कविता में भी होना है। हमने आपके लिए लिखा था कि हिंदी कविता में प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, प्रेम में श्रद्धा है, समर्पण है, प्रतीक्षा है, विरह है, और एक दूसरे के अस्तित्व में अपना संसार खोज लेने की भावना भी है। तो जब कोई कवि अपने प्रिय को केवल प्रिय नहीं बल्कि अपने प्राणों की अधिष्ठात्री, अपने हृदय की स्वामिनी या प्रिय प्राणेश्वरी मान लेता है, तब प्रेम कविता बन जाता है। और प्रेम का दूसरा रूप हम कहते हैं प्रतीक्षा को। हाँ, कभी प्रिय सामने नहीं होता, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हर क्षण, हर पल, हर क्षण सालती रहती है। मन प्रश्न करता है, आंखें खोजती हैं और हृदय पुकारता है, तू छुपी है कहाँ। और ये केवल विरह का गीत नहीं बल्कि प्रतीक्षा की कविता है। और इसी प्रेम में जब रंग जुड़ता है प्रकृति का, प्रकृति जुड़ती है, कल्पना जुड़ती है, तब शब्दों में चित्र बनने लगता है। कितना अद्भुत लगता है तब कि कवि फूलों के रंग को दिल की तरंग से जोड़ देता है। और यही कविता की शक्ति है, जहाँ प्रकृति बाहर नहीं रहती, हमारे भीतर उतर जाती है, बस उसे महसूस करना होता है। और हाँ, कविता का दूसरा रंग है प्रकृति। हिंदी कविता और प्रकृति का संबंध बहुत पुराना है। फूल, पत्ते, ऋतु, आकाश, चांदनी और जल केवल दृश्य नहीं रहे बल्कि हिंदी कविता में ये भावों के प्रतीक भी बन गए। तो कवि कहता है, क्या कहता है? स्वप्न झरे फूल से। आहा, कितना प्यारा गीत है। तो कवि केवल फूल झरने की बात नहीं करता, वो स्वप्न के टूटने और जीवन के क्षण भंगुर सौंदर्य को एक साथ हमारे सामने रखने की बात करता है कि स्वप्न भी फूलों की तरह है, सुंदर, कोमल, क्षणिक, और शायद इसी क्षणिकता में उनका सौंदर्य भी छिपा हुआ है। तो चलिए, ये इबारत का हमने पहला भाग पढ़ा है, क्योंकि इस सफर पर हम निकल पड़े हैं और गीत का आनंद भी हमें लेना है। तो करते हैं शुरुआत, क्या कहते हैं आप?
1: प्रिये,
0: हम भी श्री गणेश करें इस सफर का।

जी, तो श्री गणेश तो हो गया है ना इस कार्यक्रम का, और हम सफर पर निकल भी पड़े हैं। बहरहाल हम आपको बता दें, किशोर कुमार की आवाज में आपने फिल्म हम तुम और वो का गीत सुना। गीतकार वर्मा मलिक थे और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इस विस्तृत सुंदर सी इबारत के अनुसार कविता केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं, बल्कि मन के भीतर उठने वाली उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। इसमें कम शब्दों के माध्यम से गहरे भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसमें शब्दों का ऐसा क्रम होता है जो सुनने में संगीत जैसा लगता है। कविता का एक सुंदर संसार प्रकृति भी है, लेकिन कविता केवल प्रेम और प्रकृति तक सीमित नहीं रहती, वो जीवन के रास्तों पर भी हमारे साथ चलती है। धूप हो या छाव, साथ हो या अकेलापन, वो हमें रुकने के बजाय चलते रहने और जीवन को गीत की तरह जीने की प्रेरणा भी देती है। इबारत में बहुत सारे लोकप्रिय गाने भी हैं और आपने उन लोकप्रिय गानों का जिक्र किया भी है। देखिए ना, हमने इबारत लंबी लिखी, लेकिन साथ में कोशिश यही की कि उस इबारत में छिपे गीत संगीत को आप पहचान लें, और आप लोगों ने पहचान भी लिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो इबारत नहीं है, इबारत 5-10 पंक्तियों की होती है। आपने तो पूरा निबंध लिखा है और उस अंत में गीतों के बोल लिख दिए, जैसे प्रिय प्राणेश्वरी या और बहुत सारे गीतों का। आप इसे जिस अर्थ में देखना चाहें ये आपकी पसंद है ना। हमने तो कोशिश की है कि जो कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, यानी ऐसे गीत जो लिखे गए फिल्मों के लिए, लेकिन जिनमें कविता रही, कविता की सुगंध मिली, भावों की गहराई मिली, हमने उन गीतों का चयन आज किया है।

और उन गीतकारों ने फिल्मी गानों को हिंदी कविता के रूप में जो पेश किया वो बहुत ही लाजवाब रहा है उनका ये प्रयास। तो आज का ये कार्यक्रम हमने उन्हीं गीतों पर केंद्रित रखा है, तो जाहिर है बात कहने का अंदाज भी थोड़ा सा तो खुला होना ही होगा ना। किसी बात को समझाने के लिए आप उसकी तह तक नहीं जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लंबे अंतराल के बाद सुरीला सफर लेकर आ रही छोटी बहना मंदाकिनी जी के साथ सभी मित्रों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लंबे अंतराल की तरह आज आपने इबारत बड़ी और लंबी डाल दी है। इस पर फिल्म आनंद में राजेश खन्ना द्वारा बोला डायलॉग याद आ गया, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। क्या बात है। तो आज का कार्यक्रम भी बड़ा है, देखिए ना कितनी बड़ी बात लेकर हम आए हैं कि जीवन में कविता क्या मायने रखती है। और फिल्मी दुनिया में जहां हर तरह के गाने लिखे गए हैं वहां पर भी हिंदी कविता कितने खूबसूरत रूप में लिखी गई है, सुनी गई है, समझी गई है, सराही गई है। क्या आप इसे बड़ा नहीं मानते। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत है। नवरसों का आविष्कार, चित्रदर्शी शब्द शैली, शिल्पदर्शी रचना, सुगमता, छंद लय को लेकर आई कविता के भीतर जो सौंदर्य भाव और संदेश मिलता है वो हमें संक्षिप्त में बहुत कुछ कह देता है, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने कहा आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हैं जो हमें बेहद पसंद है, आपने उन गीतों का जिक्र भी किया है, यकीनन यही गीत आज बजने वाले हैं क्योंकि हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में उन गीतों को डालकर आज की इबारत बनाई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता के बारे में क्या कहें, कविता के बारे में सामान्य लंबाई में लिखी कविता होती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए तो महाकाव्य कहलाती है, और न गा सको तो अतुकांत कविता कहलाती है, और कहीं ठिगनी रह जाती है तो हाइकु कही जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप बहुत दिनों बाद आई हैं और इतनी बड़ी और प्यारी सी थीम के साथ, और हमारा शामिल होना मुश्किल सा लगता है, क्यों, क्या बात है, आप इस कार्यक्रम में हमारे सफर में आज साथ नहीं चलेंगे, बताइएगा हमें। वह एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़ने से अच्छा है आपके मधुर स्वर से ग्रहण कर लेना, क्योंकि इसमें भी एक भाव है जिसे पढ़कर नहीं सुनकर अपने मन में समाहित कर लिया जाएगा। बहुत सुंदर बात है, आप हमें सुन लीजिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नई उम्र की नई फसल का गीत। और जब हम इबारत पढ़ रहे थे तो इन शब्दों का, इन पंक्तियों का जिक्र उसमें आया था और आपने भी पहचान लिया था कि यही गीत बजने वाला है। गीतकार है नीरज।

के धुनक उठे झुमक उठे चरण चरण शोर मच गया चलो चली दुल्हन गाँव सब

गीतकार नीरज की ये सुंदर कविता अभी आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था नई उम्र की नई फसल। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं हमारी इबारत का ये दूसरा भाग, क्योंकि आज आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारी इबारत बहुत लंबी है, तो हमने भी सोचा इसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ दिया जाए ताकि आपको बोझिल न लगे। तो अब तक जो आपने गीत सुना वो हमारी इबारत में आ चुका था, यानी नई उम्र की नई फसल का गीत आ गया ना। आगे हमने लिखा था कि प्रकृति का एक और उज्जवल, पवित्र और आध्यात्मिक रूप हमें मिलता है। यहाँ प्रकाश केवल प्रकाश नहीं है, वो आशा है, चेतना है, मंगल है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, ज्योति कलश है वो। समझ आया कुछ? कवि जब शब्दों से प्रकाश को एक कलश में भर देता है ना, उसे छलकने देता है, तब भाषा साधारण भाषा नहीं रह पाती, वो कविता बन जाती है। और फिर प्रकृति का वही रूप तो एक चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता है, क्या चंचल, शीतल, निर्मल और कोमल। समझ गए आप? ये चार शब्द और चारों शब्दों में है पूरा संसार, चंचलता, शीतलता, निर्मलता और कोमलता। और हिंदी कविता की यही विशेषता है कि कभी कभी कुछ विशेषण ही पूरे दृश्य को

जीवित कर देते हैं। और जब ये दृश्य इतना सुंदर हो जाए कि मन स्वयं से प्रश्न करे कि कौन चित्रकार है, तब हम समझते हैं कि प्रकृति को देखने के लिए केवल आंखें नहीं कवि मन चाहिए। और कविता केवल फूल और प्रेम की बात नहीं करती, कविता जीवन को भी देखती है, उसके रास्तों को भी समझती है और मनुष्य को चलते रहने की प्रेरणा भी देती है। क्योंकि जीवन में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी साथ है, कभी अकेलापन है। तो कवि कहता है, रुकना नहीं है, चलते रहो, गाते रहो, जीवन के सफर को गीत बनाते रहो। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल भाई, ये गाते हुए गुनगुनाइए। जैसे कि आज सुरीले सफर में हम गुनगुनाते हुए चल रहे हैं, और ये केवल गीत नहीं है बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। और हर यात्रा चूंकि आसान नहीं होती, लेकिन अगर मन में गीत है, साथ में मुस्कान है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हिंदी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो गूढ़ दर्शन को भी सरल शब्दों में कह देती है। तो भारतीय काव्य परंपरा में प्रकृति केवल दृश्य नहीं परिवार है, धरती केवल मिट्टी नहीं माँ है, आकाश केवल विस्तार नहीं पिता है। जब यही सब भाव उतरते हैं तो क्या होता है, धरती कहीं पुकार के एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है और यही कविता बन जाती है, और कविता बनकर गीतों के रूप में ढलती भी है। जी, तो आज की इबारत तो हमने आपके सामने रख दी है, और वो श्रोता जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं, वो इस इबारत को समझ चुके होंगे कि आज की इबारत क्या कहती है। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गीतों को चुना है जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है। गीत तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी कविता आ जाती है, हिंदी कविता लिखी गई है, कुछ खास गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविताएं लिखी हैं, पंडित भरत व्यास, नीरज, रविंद्र जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया है। गीतकार योगेश ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। तो आज हमारे दो सवाल आपके लिए ये हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, और हमारा दूसरा सवाल कि हिंदी के किस कवि की पंक्तियां, गीतकार की रचनाएं आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है। केवल दो पंक्तियां आपको बतानी है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता जो रश्मि रथी है ना, उसमें से ली गई जो पंक्तियां हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन को, ध्यान है ना, अंतिम संदेश के रूप में, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है। या कि ये भी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आपको भी ऐसी कुछ पंक्तियां याद होंगी, चाहे वो फिल्मी गानों के रूप में या फिर साहित्य, जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ने के शौकीन जो हमारे श्रोता हैं उन्हें कुछ पंक्तियां याद होंगी, उनका जिक्र कम से कम शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने।

अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सी एक कविता ज्योति कलश छल के, और आपने देखा कि प्रभात और प्रकृति के सौंदर्य को शुद्ध हिंदी कविता के रूप में पंडित नरेंद्र शर्मा ने कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। उन्होंने उषा, आकाश, बादल, धरती, फूल और प्रकाश को मतलब ऐसे काव्यात्मक बिंबों में पिरोया है कि ये गीत सुनने से अधिक तो लगता है जैसे एक सुंदर सी कविता हमने लिख डाली है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार एक साधना है जहां प्रतीक्षा का हर पल विरह के दर्द से अलग होता है। जैसे कोई कवि शब्दों को सहेज कर कविता बुनता है, वैसे ही प्रेमी प्रतीक्षा के हर पल को यादों को सजाता है। जब हवाएं चलती है, नदियां बहती है, फूल खिलते हैं, तो प्रकृति का प्रेम ही है जो व्यक्त हो रहा होता है। बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में मिलती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू प्रकृति के प्रेम का ही संगीत है। प्यार एक ठहराव है, एक सुकून है जो इंसान को खुद से और पूरी से जोड़ देता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश में तो अलग अलग विषयों की रिमझिम रिमझिम बूंदों की बारिश सी कर दी है आपने। अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े सारगर्भित और बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता सब बना दिया है। वाकई आपने हमारी इबारत को सही ढंग से समझा है, वरना तो हमारे श्रोता शिकायत ही कर रही है या कुछ हम क्या कहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े जो सारगर्भित और बेहतरीन गीत हैं उनको हमने चुना, और उसी अर्थ में हमने आज की इबारत आपके लिए पेश की थी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप बहुत समय बाद आ रही हैं। आज तो बहुत ही लंबा पोस्ट आया है, बहुत समय लगा होगा इसे लिखने में। छुट्टी से जाकर पहले इसे ही पोस्ट करूंगी और इस पर प्रोग्राम करूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा, है ना मंदाकिनी जी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और हमें पता है आज हमें ये कार्यक्रम पेश करना है, तो हमने कल सोचा आपके लिए इस कार्यक्रम को और आज लेकर उपस्थित हो गए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं कि प्रेम, प्रतीक्षा, विरह, वेदना, खुशी, गम को कविता के रूप में कवि अपनी शैली में पिरोते हैं। प्रकृति से जोड़कर सुंदर शब्दों में विस्तार देता है, जिससे इन भावों को समझकर हम धारा में बहने लगते हैं और हमें संगीत जैसा प्रतीत होता है। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे जो गीत हैं वो इसी धारणा से लिखे गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का गद्यांश तो बहुत बड़ा है, प्रेम समर्पण कविता, प्रतीक्षा, अन्न, सपना आदि शब्दों को पिरोकर सजाया गया है, और आज का सुरीला सफर मिलते हैं आपसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता का सबसे सुंदर सत्य यही है कि वो प्रेम से शुरू होकर अंततः आत्मा तक पहुंचती है, और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। कृष्ण का प्रेम केवल पाने का नहीं, अपने प्रिय के अस्तित्व में स्वयं को विसर्जित कर देने का है। राधा की प्रतीक्षा में वही विरह है, वृंदावन की प्रकृति में वही माधुर्य, और गीता के शब्दों में वही जीवन को चलते रहने का संदेश। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम मिलन में जितना है उतना ही विरह में भी है, प्रकृति में जितना है उतना ही आत्मा में भी है। कभी वे बांसुरी बनकर मन को पुकारते हैं, कभी सारथी बनकर कर्म का रास्ता दिखाते हैं, और कभी भीतर से आवाज देते हैं, चलते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। बहुत सुंदर। तो आज के प्रश्न आपके सामने एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आज आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, जैसे कि आज कुछ गीत हमने चुने हैं सुंदर कविता के रूप में। और हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी के किस कवि की या किस गीतकार की रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है, जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दुर्योधन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती है। और एक और जैसे जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये पंक्तियां आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं? सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं।

जी हाँ, तो रविंद्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितनी सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता एक मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय रिश्ते को लेकर रविंद्र जैन साहब ने लिखी। तभी तो इन गीतों को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं।

बनाना पसंद करते हैं और यूं कहें कि ये गीत अमर से हो गए हैं, है ना, क्योंकि हिंदी कविता जो एक कवितामय गीत लिखे गए जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसा स्वादन भी होता है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है, कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप हैं, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं, उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिए, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास कार्यक्रम भी पेश किया था जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया, हमने उन्हीं के भजन भक्तिपद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वही एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से मीत चुवे शूल से, ये पंक्तियां जो कवि गोपालदास नीरज की हैं वो सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय इतनी सुंदर है कि उसको आज तक भूल नहीं पाते हैं मंदाकिनी जी। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, ये पंक्तियां जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, ये इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं और इन्हें आज भी याद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूँ, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता को चंदन सा वतन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती हैं कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ पंडित भरत व्यास के बोल हैं। जी हाँ, पंडित भरत व्यास जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।

ये कौन घूमर झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम

करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया। सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है, तू ही मेरी मोहिनी। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू भी कर दिया था और अभी भी लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता बहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, ये तो हमने पढ़ दिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेंद्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी की देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादंबिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था

आशा भोसले की आवाज में अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वही श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, महादेवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे, अंधेरा गायब हो जाए अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता मैं चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित भर व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है। रामराज फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है, ज्योति कलश छलके अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे बस इतना ही। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाल लई देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं। अरे वाह। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं, आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम।

जी बहुत ही मधुर गीत अभी हमने सुना और कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच गए हैं। हमारे श्रोता कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम छुपी हो कहां, हम आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं यहां। एक श्रोता लिखते हैं, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं, बस इतना ही, ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं, क्या बात है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं, क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है, किसी ने कहा है कि पूरी रात जग कर लिखी है आपने, किसी ने कहा है कि आज पूरा दिन लग जाएगा इस इबारत को पढ़ने और जवाब देने में। चलिए आप जैसा समझे सर, आंखों पर आपकी हर बात आपका हर भाव, बस यही होना चाहिए कि इस तरफ से हमारी जो कोशिश है वो कम नहीं होनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए प्रदीप की आवाज, फिल्म का नाम नास्तिक, गीतकार प्रदीप और संगीत सी रामचंद्र का।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया ये गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कवि। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। प्रभु के चरण चिन्ह अब भी पड़े हैं हमारी वीथि में, झुकी है कदम की एक डार, हवाओं में उड़ता है पीतांबर, कभी कभी एक सिहरन सी उठती है यमुना के शांत पानी में। वो राग, वो लीला, वो भाव कितने रूपों में जागता है आज भी। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, कृष्ण एक महाराग हैं जिसकी अनुगूंज इस धरती पर सदियों से बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की यात्रा बांसुरी से पांचजन्य के बीच संपन्न होती है। इस यात्रा में एक रस है, छंद है, पुकार है, प्रार्थना है, जो वेणु से उठती है और आगे बढ़ती हुई पांचजन्य के माध्यम से संभवामि युगे युगे का उद्घोष करती है। अद्भुत है श्री कृष्ण का चरित्र। कृष्ण संपूर्णता का नाम है। उन्हें नमन करते हुए आइए शुरू करते हैं फिल्म संगीत का आज का कार्यक्रम।

श्रोताओं, श्री कृष्ण स्पष्ट हैं और रहस्य भी हैं। वो योगेश्वर हैं और गृहस्थ भी। वो संत हैं तो योद्धा भी। वो चिंतक हैं तो सन्यासी भी। वो लिप्त हैं तो निर्लिप्त भी। उसी कृष्ण तत्व को नमन करने का दिन है आज।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर बाद सीहोर में क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के प्रथम ट्रांसफार्मर को रोल आउट करेंगे। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह इकाई एक ही स्थान पर स्थित भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगस्त 2025 में इस संयंत्र का भूमि पूजन किया था और अब करीब 13 से 14 महीने में यहाँ उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यहां 220 केवी से लेकर 1200 केवी श्रेणी के पावर ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे। इकाई की उत्पादन क्षमता हर माह 35 पावर ट्रांसफार्मर तैयार करने की होगी। इतनी बड़ी क्षमता वाली इकाई एक ही स्थान पर स्थापित होने से देश में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरणों के निर्माण को मजबूती मिलेगी। आज देश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य

0: संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। उन्होंने कामना की कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा के इस पवित्र अवसर पर सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालकृष्ण एवं राधा रानी के स्वरूप में पधारे नन्हे मुन्ने बच्चों को माखन खिलाकर उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। साथ ही कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देखी। डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के प्रमुख देवस्थल धार्मिक पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं।
1: देवस्थान हमारे लिए आजकल धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहे हैं। ऐसे में सुशासन के लिए हमारे जैसे बाबा महाकाल के महालोक के बाद आज पूरे प्रदेश में वातावरण बदला है। वहाँ 2022 तक 60-70 लाख यात्री आते थे, गत वर्ष 14 करोड़ का आंकड़ा था, इस साल 20 करोड़ का आंकड़ा हुआ है। तो ऐसे में बाकी देवस्थान पे भी यात्री जाए और तीर्थाटन के माध्यम से हमारे राज्य की इकोनॉमी बढ़े, कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे प्रत्येक काम को इसी रूप में हम बढ़ा रहे हैं।
0: प्रदेश के सभी जिलों में भी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आगरमालवा में यादव व गवली समाज द्वारा संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की भव्य विशाल पालकी यात्रा निकाली गई। जबलपुर में शाम 4 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खंडवा में भी शहर के मंदिरों में उत्साह और भक्ति का माहौल है। बात मौसम की, प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जबकि मंडला में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। छतरपुर के कुटनी और जबलपुर के बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। भोपाल में भी आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के सभी आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पहले आओ पहले पाओ राउंड की प्रक्रिया कल से प्रारंभ होगी, जो 7 सितंबर तक चलेगी। आगरमालवा में गोकवच अभियान के तहत करीब 100 गोवंशों के गले में रेडियम का बेल्ट पहनाया गया, जिससे रात के अंधेरे में सड़कों पर बैठी गायें दूर से दिखाई देंगी। और पन्ना में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा भगवान जुगल किशोर जी का जन्मोत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता

0: नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरा से पूर्व में 218, नवलपरा से पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल

0: से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें, अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी

0: प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। गीत रचना शकील बदायूनी की और संगीत नौशाद साहिब का।

0: ना पाए।
1: ओ गाड़ी वाले गाड़ी जीने बाकरे।
2: शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया फिल्म मदर इंडिया का गीत अभी आपने सुना। ये स्वर है आशा भोसले और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है नया दौर, शब्द साहिर लुधियानवी के और तर्ज ओपी नैयर की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये है अगली पेशकश। एस डी बर्मन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की बोल, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजी, फिल्म का नाम है प्यासा।

कार्यक्रम में आप सुनिए हजरत जयपुरी का लिखा गीत और वसंत देसाई का संगीत, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है जनक जनक पायल बाजी।

0: गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
1: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
0: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
0: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ। शब्दकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार वसंत देसाई हैं।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए, तो हम वहाँ पे

0: के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म CID से स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, गीत रचना जानिसार अख्तर की और धुन OP नैयर की।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई से आए हैं, शाहजहान के पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भैया सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों की राखी बन जाती है, रचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे हैं ने आपके जीवन में। अभी खुशियों के दिन आ रहे हैं, जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर है हम
0: जी,
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे
0: जी। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंबा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बड़ौदा से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है। रसोई का और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ।
0: अरे वाह,
1: तेज पत्ते में से, पिस्ता में से,
0: यानी
1: आचार

0: गुंदे आते हैं ना, गुंदा था ना, वो भी हिस्सा वाला तूफान लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला हिस्सा
1: जी,
0: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर पुरते है।
1: वाह वाह वाह, यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप फेंकती हाँ। नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना।
0: और मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान में रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
1: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि जिन चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: और गाना गाना भजन कीर्तन सब आता है मैडम
1: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।
0: खमार खमार मारो अलंगा के श्याम, आवी ने मारी मटुकी फोड़े अरे रे श्याम, आवी ने मारी मटुकी फोड़े, कमर कमर मारू अलंगा जे शाम, आवी ने मारी मटुकी फोड़े, गायो चरवी वालों तीनु नाना से शाम, आवी ने मारी मटुकी फोड़े, गोपियो नगर माजी में लीलायो करे शान, आवी ने मारी मटू की खोड़े।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना वो भी करती रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं।
0: नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है,
1: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

कैसे हो किसम खाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसे होगी समझ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ
0: जी।
1: तीन बच्चे हैं मेरे, दो बेटी है एक बेटा है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा, नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, आपको तो मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ। जी मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी ऐसा होता है ना कि सावन भादो का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है। तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में
0: जी,
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग क्या बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ

0: है कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी जी, हमें क्या हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है। चीनी कम, गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है।
0: जी
1: जी, जो गन्ने का रस जब निकलता है ना, तो पहले मीठा बनता है, उसके बाद गुड़ बनता है। तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
0: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से।
0: जी रुचि जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया।
0: हम्म।
1: और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी, यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान

0: इंसान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है
0: जी। और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से
0: जी। मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई, तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं, शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे, और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं
0: जी। यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने
0: जी। बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा,
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है, अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
0: क्या बात है, और आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
0: और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ सुनाइए आप।
1: तेरा जाना दिल के अरमानों का।

0: के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना।
1: बहुत सुंदर, बहुत

0: बहुत सुंदर, बहुत
1: जी तो याद आ गया, वो गा दिया मैडम कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं, बहुत सुंदर आपकी आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे आपने कहा कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं? कुछ
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्षर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं। पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते ना इनहेरेंट होती है, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए, तभी वो उभर के बाहर आ सकता है।
0: और आप रियाज के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
1: जी जी जी,
0: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हाँ, यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है।
0: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
1: हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। तो दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है ऐसा मुझे लगता है।
0: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी का, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
0: जी,
1: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, तो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: आलिया भानु बात कर रही हूँ, बड़ोदरा गुजरात से।
0: जी आलिया जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैडम मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आज सोनाली पाठक बोल रही है ना?
0: जी हाँ, मैं सोनाली बात कर रही हूँ।
1: मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा।
0: जी हाँ,
1: खुशी हो रही है।
0: जी हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियाँ क्या है आपकी, कौन से शौक है आपके?
1: मुझे रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: गाने सुनने का
0: जी।
1: और मुझे ना सितारों के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: एक रिश्ता फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। और दीदी मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है
0: जी,
1: सलमा दीदी की आवाज भी।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबर रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबर रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया।
0: जी साइबर रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ।
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स है कि बीए के बाद में क्या करना चाहती है?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
0: टीचर बनना चाहती है?
1: जी मैम।
0: जी तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती,

0: इसके पीछे भी कोई कारण होगा।
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी, जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है
0: जी। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
0: जी। अच्छा, अपने शहर के बारे में बताइए
1: जी। हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे, सांदीपनी आश्रम है उनका
0: जी।
1: महाकाल का मंदिर भी है, बड़ा ज्योतिर्लिंग माता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला
0: जी। संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: मैं सुहाना बानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए आप क्या करती हैं।
1: बेटा मैं दर्दी देना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ कपड़ों में, कपड़े में सिलती हूँ मैडम।
0: जी यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है।
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको।
1: मैडम मुझे हिलो फरमाइश आता है, वो भी बहुत पसंद है, और आज के फंसारो बम्बे टोकी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं।
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डाइडसम।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 28670288 यानी 28670288। और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
1: घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदककर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं, पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है। जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि ये मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ, रौनक बनी रहती है। एक दिन मेरी जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही, बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता। फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैप ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था।

नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए? कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है? वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवेल पढ़ती रहती। और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती। और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता। वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ? तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ। कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो। कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़। शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बंबई से।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चले उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहां सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही है वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना, नेहा को भी दिखाना।

था। वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पाँव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और दो घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, एक चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा, ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलट कर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदल कर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो, और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे, और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं। मेरी

उसने तय कर लिया। अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें, और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन ट्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब ट्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा, और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सिंहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी। सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया, गुनगुना उठी।

आखिर कब तक। रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास भोपाल में श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण पाथे के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन संदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली विरासत से परिचित हो और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। भारत के अंतरिक्ष सफर में एक और शानदार उपलब्धि हासिल हुई है। क्रायोजेनिक इंजन ने अपना निर्धारित संचालन पूरा किया और EOS-05 को सफलतापूर्वक उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही GSLV-F17 EOS-05 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस माह राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतिज्ञा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला एशिया कप में एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलते हुए अपनी शानदार आक्रामकता से नया मील का पत्थर स्थापित किया है। उन्होंने 64 गेंदों में 124 रन बनाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का है।

उद्धरेदात मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। साथियों, ये श्लोक माधव द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया अध्याय 6 का 5वां श्लोक है। इसका अर्थ है, मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को निराश या नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। माधव, जो कि एक अन्य नाम है श्री कृष्ण का, लेकिन साथियों श्री कृष्ण को माधव नाम मधु नामक दैत्य का वध करने के कारण नहीं मिला था, बल्कि उस दैत्य का वध करके तो श्री कृष्ण मधुसूदन कहलाए। तो आखिर किस तरह श्री कृष्ण माधव कहलाए, जानेंगे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार साथियों, मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ अभिदीप सुहाने, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के युववाणी कार्यक्रम में। तो साथियों, इस सब की शुरुआत हुई ब्रह्मा जी से, जिनके मानस पुत्र हुए ऋषि अत्रि, और अत्रि ऋषि के पुत्र हुए सोम, जिनको

को चंद्रमा भी कहा गया। इन्हीं सोम से शुरुआत हुई चंद्रवंश की। चंद्रवंश में आगे चलकर महाप्रतापी राजा ययाति हुए, जिनको उनके ससुर गुरु शुक्राचार्य ने असमय बूढ़ा होने का श्राप दे दिया था। ययाति ने जब अपने बड़े पुत्र यदु से उसकी जवानी मांगी तो यदु ने उन्हें मना कर दिया, जिससे नाराज होकर ययाति ने अपने पुत्र यदु को श्राप दिया कि तुम्हारा कोई भी वंशज चक्रवर्ती राजा, उदाहरणार्थ के लिए हस्तिनापुर जैसे मुख्य सिंहासन का राजा, नहीं बन पाएगा। और फिर अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को राज्य दे दिया, जिससे कुरुवंश चला, जिसमें कौरव और पांडव हुए। तो वहीं दूसरी ओर पिता के श्राप के बाद यदु ने एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य की स्थापना की, जो यदुवंश कहलाया। साथियों, यदु की कई पीढ़ियों के बाद इस वंश में राजा देवश्रत्र के पुत्र मधु का जन्म हुआ। राजा मधु स्वभाव से सहज व मधुर तो थे ही, मगर साथ ही अत्यंत प्रतापी, धार्मिक और प्रजापालक सम्राट भी थे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर एक वन की स्थापना की, जिसे मधुवन कहा गया। फिर हुए राजा मधु के पुत्र लवण। राजा मधु के संन्यास पर जाने के बाद मधुवन पर उनके पुत्र लवण ने राज किया। अब लवण जो थे वो राजा मधु से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे, क्रूर और हिंसक। इस कारण मधुवन की प्रजा अत्यंत परेशान रहने लगी। समय बीता तो लवणासुर का भी अंत हुआ, जो किया भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने, और मधुवन को काट कर वहां नगरी बसाई, जिसे नाम मिला मधुपुरा। कुछ समय तक राम जी के वंशजों ने मधुपुरा पर राज किया। उसके बाद वहां राजा मधु के वंशज वापस आ गए, लेकिन उसी वंश की एक शाखा का एक अधर्मी पुत्र अपने पिता को कारावास देकर छल से राजगद्दी पर बैठ गया। राजा मधु का साम्राज्य पहले मधुवन से मधुपुरा बना, और फिर मधुपुरा से मधुरा कहलाया जाने लगा। मधुरा में अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था कि एक रात वहां आकाशवाणी हुई कि इस कुल में एक बालक जन्म लेगा जो अत्याचार का अंत करेगा। फिर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की एक अंधेरी रात में मधुरा की एक काल कोठरी में एक बालक का जन्म हुआ, जिसने कुछ वर्षों बाद उस अधर्मी राजा जो छल से राजगद्दी पर बैठ गया था उसका वध किया। उस अधर्मी राजा का नाम था कंस और वध करने वाले का नाम था कृष्ण। साथियों, जब श्री कृष्ण ने मधुरा, जो बाद में मथुरा कहलाया जाने लगा, वहां के लोगों में अपने पूर्वज राजा मधु की मधुरता के साथ साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया, तो प्रजा ने उन्हें अत्यंत पारिवारिक व गौरवशाली नाम से पुकारा, माधव, अर्थात राजा मधु के वंशज। साथियों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की जिस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसे ही हम आज जन्माष्टमी के तौर पर मनाते हैं। इस आशा के साथ कि जिस प्रकार मथुरा में जन्म लेकर श्री कृष्ण ने वहां के लोगों को कष्ट से मुक्त किया, उसी प्रकार प्रभु हमारे कष्टों को भी हर लेंगे। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब आपको सुनवा देते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म झूठा ही सही से ये प्यारा सा गीत। आवाज थी चिन्मयी और जावेद अली की। अब्बास टायरवाला की शब्द रचना को संगीत में पिरोया था AR रहमान ने। साथियों, हमारे देश की पहचान केवल बड़े उद्योगों से नहीं बल्कि उन कारीगरों और शिल्पकारों से भी है जो अपने हुनर से हमारी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखते हैं। इन्हीं के सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। ये योजना क्या है और क्या है इसके लाभ, आइए जानते हैं। साथियों, इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके कौशल के आधार पर पहचान, प्रशिक्षण, आधुनिक औजार और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने काम को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। साथियों, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, नाई, दर्जी जैसे अनेक पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना के माध्यम से कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे आधुनिक तकनीक और बेहतर कार्य पद्धतियों को अपनाकर अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। आधुनिक औजारों की सहायता मिलने से कारीगर अपने काम को अधिक कुशलता से कर सकते हैं साथियों, और अपनी उत्पादकता तथा आय बढ़ाने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, योजना में पात्र लाभार्थियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा का भी प्रावधान है जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक निवेश कर सकें। साथियों, आज केवल अच्छा उत्पाद बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे बाजार तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसलिए कारीगरों को डिजिटल लेन देन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार से जुड़ने की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। हमारे कारीगर केवल वस्तुएं नहीं बनाते बल्कि हमारी

सदियों पुरानी कला, संस्कृति और परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हैं। इसलिए उनके हुनर को सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है। साथियों, हमें अपने आसपास के पात्र कारीगरों और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी देकर उचित माध्यम से इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि पारंपरिक हुनर को आधुनिक अवसरों से जोड़कर कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। साथियों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमें ये संदेश देती है कि हुनर कभी भी छोटा नहीं होता। सही पहचान, प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर यही हुनर आत्मनिर्भरता और समृद्धि का आधार बन सकता है। आइए हम अपने विश्वकर्माओं के सम्मान और सशक्तिकरण में सहभागी बनते हैं। तो साथियों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रम की दूसरी चर्चा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवा देते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पाप का ये गीत। आवाज थी राहत फतेह अली खां की। अमजद इस्लाम अमजद के बोलों को संगीत में पिरोया था शाही ने। साथियों, भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं होती, बल्कि ये हमारी संस्कृति, पहचान और भावनाओं को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन भी होती है। हमारी भाषाएं और बोलियां हमें हमारी विविधता में एकता की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। साथियों, भारत अनेक भाषाओं और बोलियों का देश है। अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं और बोलियां वहां की संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं की पहचान होती हैं। बोली किसी क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित भाषा का स्थानीय रूप होती है। इसमें उस क्षेत्र के लोगों की जीवन पद्धति, लोक अनुभव और सामाजिक परंपराओं की झलक दिखाई देती है। हमारी मौखिक परंपराएं भी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। साथियों, लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें, पहेलियां, भजन और पारंपरिक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती रहती हैं। साथियों, हमारे बुजुर्गों के पास अनेक ऐसी लोक कथाएं, गीत और कहावतें हैं जिसमें जीवन के अनुभव और ज्ञान छुपे हुए होते हैं। इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, आधुनिक तकनीक और बदलती जीवन शैली के कारण कई छोटी भाषाएं और बोलियां धीरे धीरे कम प्रचलन में आ रही हैं। यदि समय रहते इन्हें सहेजा ना गया तो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो सकता है। भाषा और बोली को बचाने का सबसे सरल तरीका है हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में सम्मान पूर्वक बोलें, जिस प्रकार हम अंग्रेजी बोलते हैं, और बच्चों को भी अपनी मातृभाषा तथा स्थानीय बोली से जोड़ कर रखें। साथियों, हमें लोकगीतों, लोक कथाओं, कहावतों और पारंपरिक ज्ञान को लिखित, ऑडियो और वीडियो माध्यमों से सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे परिचित हो सकें। साथियों, विद्यालय और समाज भी भाषाओं व बोलियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्थानीय भाषा में कहानी, कविता, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ सकता है। किसी भाषा या बोली को छोटा या बड़ा समझना उचित नहीं है। प्रत्येक भाषा अपने साथ एक इतिहास, संस्कृति और लोगों के अनुभवों को लेकर चलती है। सभी भाषाओं और बोलियों का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोली का सम्मान करेंगे, मौखिक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे और अन्य भाषाओं एवं बोलियों के प्रति भी सम्मान की भावना रखेंगे। साथियों, भावनाएं, बोलियां या मौखिक परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत की जीवंत धरोहर हैं। भाषा बचेगी तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो हमारी पहचान भी बनी रहेगी। तो साथियों, अपनी भाषाओं और बोलियों को सम्मान दें, उन्हें बोलें, सीखें और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं, ताकि जिस गौरवता से हम अंग्रेजी बोलते हैं, उस गौरवता से हमारी लोक भाषा भी बोली जा सके। तो साथियों, ये थी आज के कार्यक्रम की तीसरी और आखिरी चर्चा विषय भाषाएं, बोलियां और मौखिक परंपराओं पर। लीजिए अब सुनिए ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिक्की वायरस से ये प्यारा सा गीत। आवाज थी अरिजीत सिंह की, शब्द रचना एवं संगीत था हनीफ शेख का। आइए साथियों, अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है UPSC EPFO असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। पदों की कुल संख्या 80 है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट upscionline.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मैं जुड़ा हुआ था आपके साथ अभिदीप सुहाने। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। अब सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लफ्ज और लम्हे।
1: हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है लिजा के
2: लफ्ज और लम्हे। इस प्रोग्राम में कबूल फरमाइए
1: नासिर
2: और साहिबा का प्यार भरा आदाब।
3: लालच बुरी बला है, ये हम सबने सुना है, मगर क्या हम सबने इस बात को समझा है?
2: नासिर जी, लालच की वजह से न जाने कितनी ही और परेशानियां सामने आती हैं, इसीलिए इसे मुसीबतों की जड़ कहते हैं।
3: लिजा जी, आप भी तो कुछ कहिए ना लालच पर।
4: नासिर जी, किसी ने सही कहा है, लालच बुरी बला है, मगर आजकल हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। मगर कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो लालच की पहुंच से कोसों दूर दिखाई देते हैं। अगर ऐसा कोई शख्स भी लालच की गिरफ्त में आ जाए तो यकीन नहीं होता, दिमाग जैसे सुन हो जाता है और तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं।

क्यों बिकने लगे इस मोल भाव में, पर आप क्यों बिकने लगे इस मोल भाव में, पर आप क्यों बिकने लगे इस मोल भाव में। सबको मनो चैन का दे करके तपसरा, सबको

को ले चला ख्वाहिश का काफिला। परदेश हमको ले चला

नश्तर चुभा हो जैसे किसी रिश्ते घाव में, नश्तर चुभा हो जैसे किसी रिश्ते घाव में, ऐसों के फैसलों पे सारा कैसा शक शुभा, ऐसों के

0: वाह बहुत खूब
1: शुक्रिया।
2: लिजा के लफ्ज और लम्हे इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए साहिबा
0: और नासिर को।
3: लिजा के
2: लफ्ज और लम्हे
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड।
5: प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लफ्ज और लम्हे अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे कुछ गैर फिल्मी गीत और संगीत। कार्यक्रम में पहली गजल आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज की आवाज में। सईद शाहिदी ने इस गजल को लिखा है। संगीत निर्देशन जगजीत सिंह का है। सुनते हैं ये गजल।

चंदन दास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज में गजल। नसीर काजमी ने इस गजल को लिखा है, संगीत रफीक हुसैन और गुलाम अली का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में एक और गज़ल हम शामिल कर रहे हैं मिताली की आवाज़ में। ज़हीर अनवर ने इस गज़ल को लिखा है, संगीत निर्देशन भूपिंदर सिंह का है, एल्बम का नाम है आपस की बात।

0: श्रोताओं, इसी गजल के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता को हम संपन्न कर रहे हैं। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है। बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, अनुप्रसारित करेंगे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का और

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वाजिद खान और साथियों की आवाजों में सुनिए समीर का लिखा गीत। संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है रंगरेज़।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और साथियों की। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है मुकाबला।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार, शब्बीर कुमार, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है इंदीवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगला गीत आप सुनेंगे कैलाश खेर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। गीत लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है देव।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
4: तराने नए पुराने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.6 MHz पर शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार गीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र की आवाज में ये गीत। महेंद्र दहलवी ने इस गीत को लिखा है। संगीत निर्देशन राम लक्ष्मण का है। फिल्म का नाम है दर्द दिल।

0: भंग प्याले नहीं पीते, किसी के नैनों की शराब पीते हैं शराब।
1: कौन है रे बाबूआ
0: बतावे? अरे हमरे मोहल्ले

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फरुक कैसर का लिखा हुआ यह गीत। बप्पी लहरी ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है लहू के दो रंग।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए अगला गीत, तेरे घर के सामने। इस फिल्म से ये गीत हमने लिया है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, एसडी बर्मन ने संगीत तैयार किया है, शब्द रचना हसरत जयपुरी की है।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FMN 102.6 MHz पर शाम के 7 बजने को है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्यक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपको जानकारी दे रहे हैं आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की, और उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कल की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। शुरुआत करते हैं आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी के साथ। तो अब से कुछ ही देर के बाद 7:10 से सुनिएगा प्रादेशिक

0: समाचार भोपाल केंद्र से 7:20 से सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8 से कार्यक्रम संगीत चित्रपट संगीत और 8:15 से कार्यक्रम संगीत सरिता। आज रात 8:30 से सागर संवाद कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 8:45 से सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। रात 9 से समय होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। 9:30 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे। आज रात 11 से दिल्ली केंद्र से सुनिएगा हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण। आज की प्रसारण सभा का समापन हम रात 11:10 पर करेंगे।
1: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
2: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
2: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है।
3: News on AIR।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से और अब आपको जानकारी दे रहे हैं कल यानी 5 सितंबर सन 2026 दिन शनिवार के कार्यक्रमों की। हमेशा की तरह प्रसारण सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:53 पर। 6 से हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से आप सुनिएगा। कल सुबह 6:05 से भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना आप सुन सकेंगे। 6:30 से श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ आप सुन सकेंगे। गायक स्वर होगा श्रीकांत परगांवकर और रविंद्र साठे का। सुबह 6:40 से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का प्रसारण किया जाएगा। 6:55 से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। 7 से कार्यक्रम सुबह सुबह और 7:05 से कार्यक्रम कृषि संकेत। कल सुबह 7:10 से भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:20 से सुनना ना भूलेगा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कल सुबह 7:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुन सकेंगे कुछ गैर फिल्मी गीत और संगीत और 8 से दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण। 8:15 से कार्यक्रम लोक संगीत और 8:30 से कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 9 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम रिले करेंगे। सुबह 10 से जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे भोपाल केंद्र से। कल सुबह 10:05 से सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत और 10:30 से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। कल सुबह 11 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7:10 होने को हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण। करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रीमियम
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश को पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर में नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट का किया लोकार्पण, बोले यह देश के इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम को ट्रांसफार्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश में भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व और भोपाल, इंदौर, विदिशा, सतना, पन्ना, श्योपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश, नदी नाले उफान पर। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
4: I am very happy to announce that GSLV.
5: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीहोर में क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के प्रथम ट्रांसफार्मर को रोल आउट कर शुभारंभ किया। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह इकाई एक ही स्थान पर स्थित भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। डॉक्टर यादव ने यहां कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को लगातार नई गति मिल रही है। प्रदेश में नई इंडस्ट्रीज की शुरुआत से उत्पादन बढ़ता है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनते हैं और राज्य की इकोनॉमी के साथ देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है।
6: सीहोर श्योर है, निवेश में सिक्योर है और रिटर्न एश्योर है। सच में देश के इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम को ट्रांसफार्म करने में ये पावर ट्रांसफार्मर यूनिट अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगी। हमारे पास इस मध्य प्रदेश की ग्रोथ के 5 दोस्त हैं: पैशन, पोटेंशियल, पॉलिसी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन। इतनी बड़ी फैक्ट्री का, जो कहा गया देश ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री है, अब यहाँ की जो क्षमता भी बताई तो एक साल में 365 आप बनाएंगे। जब आज आप बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर की फैसिलिटी देंगे, वाकई ये अद्भुत है और 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगस्त 2025 में इस संयंत्र का भूमि पूजन किया था और अब करीब 13 से 14 महीने में यहां उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यहां 220 केवी से लेकर 1200 केवी श्रेणी के पावर ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे। इकाई की उत्पादन क्षमता हर माह 35 पावर ट्रांसफार्मर तैयार करने की होगी। संस्कृति विभाग अंतर्गत श्री कृष्ण पाथे न्यास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी 2.0 के वॉल वर्जन का लोकार्पण किया। इसमें लगभग 21 लाख वर्ष पूर्व तक की पंचांगीय गणनाओं का अध्ययन करने तथा आगामी लगभग 5 लाख वर्षों तक की कालगणना देखने की सुविधा विकसित की गई है। पिछले दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अवलोकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और अधिक परिष्कृत करने तथा प्राचीन काल की गणनाओं को इसमें समाहित करने का सुझाव दिया गया था। इस घड़ी में त्रेता युग, द्वापर युग से लेकर वर्तमान काल तक के विशाल कालखंड को भारतीय कालगणना के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
3: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाल कृष्ण एवं राधा रानी के स्वरूप में पधारे नन्हे मुन्ने बच्चों को माखन खिलाकर उनका स्नेह पूर्वक स्वागत किया। साथ ही कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देखी। डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा, अब मध्य प्रदेश के प्रमुख देवस्थल धार्मिक पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण पड़े उन स्थलों को मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण पाथेय के रूप में विकसित कर रही है। साथ ही भगवान श्री राम से जुड़े पावन स्थलों को श्री राम वनगमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण पाथेय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन संदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली विरासत से परिचित हो और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। प्रदेश के सभी जिलों में भी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। उधर उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान बांधवाधीश का राम जानकी मंदिर खोला गया, जहां 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नीमच में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगरमालवा स्थित मुरली मनोहर मंदिर में आयोजित किए गए श्री कृष्ण पर्व के अंतर्गत विशेष सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा भक्ति गायन और श्री कृष्ण केंद्रित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जा रही है। भोपाल, शिवपुरी, पन्ना, नर्मदापुरम, शहडोल, रायसेन, झाबुआ सहित सभी जिलों से जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में होगा। समारोह में प्रदेश भर से चयनित 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और ₹25,000 की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जबकि मंडला में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। छतरपुर के कुटनी और जबलपुर के बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। भोपाल, इंदौर में भी आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। उधर शिवपुरी में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद आज सिंध नदी में पानी का बहाव बढ़ने के बाद इस नदी पर बने मणिखेड़ा डैम के 4 गेट खोल दिए गए। सीहोर जिले में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जल स्रोत भर गए हैं। शहडोल जिले में आज बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। छोटे बड़े सभी जलाशय और बांध लबालब भर चुके हैं। इस सीजन में पहली बार बाणसागर बांध 100% भर गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले की 12 वर्षीय छात्रा पीहू परस्ते प्रदेश के चुनिंदा प्रतिभावान बच्चों में शामिल किया गया है। 26 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर मिला। नर्मदापुरम जिले की मंडी प्रांगण पिपरिया में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें 320 से अधिक नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। जबलपुर में नर्मदा तट ग्वारी घाट में आज नर्मदा नदी में पेट्रोलिंग के दौरान होमगार्ड जवानों से भरी मोटरबोट अचानक डूब गई। हादसे में सभी जवान सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। शिवपुरी, मुरैना जिलों की शासकीय ITI में प्रवेश के लिए पहले आओ पहले पाओ राउंड कल से 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और पांडुर्णा में सदियों पुराने प्रसिद्ध गोटमार मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। यह मेला इस साल 11 सितंबर को जाम नदी के किनारे लगेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

तो जय कन्हैया लाल की ग्राम सभा सुनवे बारे सभी किसान पंचों को रज्जू भैया की जय राम जी की पहुंच जाए। और भैया हरो, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पावन पर्व भी श्रद्धा आस्था और धूमधाम से मनाओ जा रहा है, तो सभी जनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसी कि अपन और जाना तो भैया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में अपन और मनाऊ थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिनने पृथ्वी से अत्याचार और अधर्म को समाप्त करवे के लाने जन्म लव हतो। जो पर्व बुराई पे अच्छाई और असत्य पे सत्य की जीत को प्रतीक मानो जाते भैया। भगवान कृष्ण को जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में मथुरा के कारागार में भव हतो। और फिर बाद में भगवान कृष्ण ने अत्याचारी राजा कंस को वध करो, लोगों को अत्याचार से मुक्ति दुआई। भगवान कृष्ण को प्रेम करुणा और रक्षा को प्रतीक मानो जाते भैया। वे देवकी और वासुदेव के पुत्र हते और उनको पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने गोकुल और वृंदावन में करो हतो। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी जनमानस के हृदयों में बसी हैं और भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप में एक दर्शन है, एक अध्यात्म के स्वरूप है। तो एक बार फिर से सब जनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आओ अब सुनते हैं भैया जो लोक भजन चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
2: आपकी चाय, EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
3: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा, इतना इजी। काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है, इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
4: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें, RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: सभी किसान भैया बिन्नारों को एक बार फिर से स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम ग्राम सभा में। भैया बिन्नारों, आज 4 सितंबर को ब्रिटिश कालीन भारत के बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनैतिक और सामाजिक नेता दादा भाई नौरोजी जी की जयंती है। उनको जन्म 4 सितंबर 1825 में मुंबई में भावा तो उन्हें भारत को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से भी जानो जाते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 3 बार 1886, 1893 और 1906 में एक अध्यक्ष रहे। वे ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के लाने भी चुने जावे वाले पहले भारतीय थे 1892 में। और दादा भाई नौरोजी जी ने सबसे पहले 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से स्वराज यानी के स्वशासन की मांग रखी थी। उनने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 के माध्यम से ब्रिटेन के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर करो हतो। उनने महिलाओं की शिक्षा और समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गुजराती पत्रिका रास्त गोफ्तार की शुरुआत करी हती। 30 जून 1917 को उनकी मृत्यु मुंबई में भई। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और आधुनिक भारत के निर्माण में अपनों अतुलनीय योगदान देवे वाले इतिहास पुरुष दादा भाई नौरोजी की जयंती पे उन्हें शत शत नमन। भैया बिन्नारो, आज हिंदी साहित्य के महान लेखक, कवि और नाटककार धर्मवीर भारती जी की पुण्यतिथि भी है। उनको जन्म 25 सितंबर 1926 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भावा तो और मृत्यु 4 सितंबर 1997 में भई। वे प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका धर्मयुग के लंबे समय तक मुख्य संपादक रहे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा योग, ठंडा लोहा आदि कई रचनाएं हैं। उन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री से सम्मानित करो गया तो 1989 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित करो गया। इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त भए। तो ऐसे महान साहित्यकार धर्मवीर भारती जी की पुण्यतिथि पे अपन उनके लाने याद कर रहे हैं और शत शत नमन कर रहे हैं। और भैया बिन्ना हरो, एक बाद कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। आज को साप्ताहिक क्रम रहते भैया अपन जानत हो शुक्रवार को आकाशवाणी गांव में। तो आज हम ले आए हैं ग्राम बम्होरी ढूंढर की स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित कार्यक्रम। आओ सुनाते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी गाँव में।

0: आकाशवाणी गांव में आज एक कार्यक्रम के अंतर्गत हम पहुंचे हैं सागर के नजदीकी गांव बम्होरी ढूंढर में। बम्होरी ढूंढर के किसान भैया आ रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं और भी जो पारंपरिक फसलें हैं उनकी खेती कर रहे हैं, संगे संगे पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। तो बम्होरी ढूंढर के एक किसान भैया अपने संगे हैं। भैया का नाम आपको?
1: हम मोहन अहरवाल।
0: अच्छा, तो मोहन भैया अबे किसानी में का हो रहो है?
1: अबे हम साथ गोभी लगाए हैं।
0: अच्छा,
1: गोभी लगा निंदाई कर ली हमने, खाद डाला, दवाई डाल ली और अब साहब अब वो गिरे गिरे कर रहे हैं। और अब जो ये कि पानी तक जाना गिर रहा है।
0: अच्छा,
1: अब हम दो तीन दिन से सो में पानी भर गए कोने कोने घरों में, तो के पेड़े भी गल रहे होगा रहे।
0: अच्छा,
1: सो अपन को पानी निकाल दे हैं।
0: बिल्कुल भैया, जल निकासी की व्यवस्था जरूर अपन को करने हैं। और जा बताओ भैया, गोभी की खेती अपन करत हो तो खेत वगैरह की तैयारी कैसे का करत हो, अपने अनुभव बताओ भैया।
1: पहले हमने खाद डरवा था साहब।
0: अच्छा, गोबर की खाद
1: को? हाँ, दो तीन ट्राली। फिर हमने बखरवा था बारी रोटर बीट चलवा सूखे में, और फिर अपन ने घर निकलवाई।
0: अच्छा,
1: पौध बनाई अपन ने, पौध लगाई।
0: तो भैया पौध तैयार करत समय अपन ने कौन कौन सी बातों को ध्यान रखो?
1: हमने साहब देखो पहले क्यारी बनाई और वो में खाद वगैरह डालो, देसी है, गोबर को है, कछु सरकारी भी डाले जाके अपने पौधा अच्छा बन जाए। वो में कीटाणु ने लगे उगरे ने,
0: हाँ
1: अपन ने वो पानी वो रेन पाइप को पानी भी दो अपन ने फलहार को।
0: हाँ,
1: ये चीजों को अपन ने विशेष ध्यान रखो है। और आपके यहाँ हम जानकारी ले लेते हैं किसान वाणी से।
0: और भैया बीज उपचार ना करो तो का?
1: बीज उपचार आता है साहब, वो पेकाउ थे सुबह पेकाई में उपचार आउ थे वो।
0: भैया कोनो भी फसल हो चाहे नर्सरी की अपन तैयारी कर रहे हो, वो के लाने भैया अपन FIR क्रम में बीज उपचार जरूर करें, जैसे फफूंद जनित और कीटों के द्वारा फसल को नुकसान से अपन बच जाते हैं।
1: बिल्कुल साहब।
0: तो सबसे पहले भैया फफूंद नाशी से अपन बीज उपचार करें, उसके बाद कीटनाशक से उपचार करें, और फिर भैया राइजोबियम कल्चर के द्वारा और दूसरी फसलों के लाने अलग अलग कल्चर आउट हैं उसके द्वारा अपन उपचार कर सकते हैं। तो जो बीज जनित बीमारियां हैं उनसे अपन फसल को बचा सकते हैं। और भैया गोभी की अबे का स्थिति है?
1: गोभी की अबे हाल तो ठीक है साहब, बॉडी पे आ चुकी है गोभी।
0: अच्छा,
1: और छोटे छोटे फूल निकलने लगे हैं अबे हाल।
0: तो भैया जब फसल कातक के महीना तक आ जाए है?
1: हाँ भैया आ जाए है, अबे आधे सितंबर से चालू हो जाए।
0: अच्छा,
1: और अक्टूबर और नवंबर चल है।
0: बहुत अच्छी बात है भैया, बाजार में अगर ऐसी जो सब्जियां हैं वे अगर पहले आ जाए समय के तो उनके दाम अच्छे अपन को मिल जाते।
1: अच्छे मिल जाते। हाँ साहब, अच्छी बोल रहे हैं आप। टमाटर सही लगाए हैं?
0: अच्छा, टमाटर भी लगाए भैया?
1: हाँ, का करो पहले बेड निकलवा रहे थे।
0: हाँ,
1: फिर पन्नी बिछा दी।
0: अच्छा,
1: ड्रॉप की लगे है टमाटर,
0: मल्चिंग कर दी।
1: हाँ, मल्चिंग के। तो मनो साहब वो की रेट तो खूब कर रहे
0: हैं।
1: मनोरो की कल की सूख रही है साहब।
0: अच्छा,
1: फल भी लग गए हैं।
0: तो भैया आपने मिट्टी की जांच करवाई थी का?
1: अबे मिट्टी की जांच नहीं करवाई साहब, आए थे विशेषज्ञ देख भी। तो क्या लगे हम मिट्टी की जांच आपको करके बताए हैं।
0: देखो भैया, मिट्टी की जांच के द्वारा अपन को जा पता चल जाता है कि अपनी जमीन में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो उस हिसाब से भैया अपन खाद उर्वरक डाल के उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। और खास तौर से भैया गोभी की फसल में तो खाद वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अच्छी खाद अच्छे पोषक तत्व दे वो जरूरी है।
1: बिल्कुल साहब, सही कह रहा हूँ, करना ही पड़ा करना पड़ा तो जब अच्छी होते फसल।
0: हाँ, और भैया कौन रोग दोग तो नहीं लग रहा फसल में?
1: फसल में ऊसा रोग तक कछु नहीं, जैसे टमाटर के पत्ता सूख रहे हैं और गोभी के पीले पड़ रहे हैं पत्ता।
0: अच्छा,
1: हाँ नया चीज है।
0: तो भैया देखो, पीलापन के लाने तो जो कारण भी हो सकता है, अबे अपन देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, पौधों को घाम नहीं मिल पा रहा हुआ है, तो उसे भी भैया ज्यादा पानी की अवस्था में फसलों में पीलापन आउट है ना। तो अपन एक ही लाने भैया जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें फसल में। और मोहन भैया, अपनी जो खरीफ की फसलें हैं वे कौन कौन सी लगाई अपन ने?
1: खरीफ की फसल अबे हम साहब ये कारण तो गोभी लगाए हैं और हम कछु नहीं लगाए अबे।
0: और सोयाबीन वगैरह नहीं लगाए?
1: सोयाबीन हम नहीं लगाए, कम है अपनी जमीन थोड़ी सी, एक एकड़ है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब खास तौर से भैया अपन सब्जियों की खेती से जुड़े हो?
1: जी जी।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, आप उन्नत तरीका से सब्जियों की खेती कर रहे हैं, आपकी किसानी अच्छी रहे। और मोहन भैया जाओ और बताओ कि आपने जो सरकारी योजनाएं किसान भैयाओं के लाने चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं को फायदा लो है?
1: सम्मान निधि के पैसे आउट हैं साहब।
0: अच्छा,
1: सरकारी के हमारे नाम पे तो नहीं है, जमीन माता के नाम पे सबको मिल जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है भैया। और फसल बीमा सो ही करवाऊ भैया के? नहीं,
1: फसल बीमा गोभी की नहीं करवाई हमने।
0: अच्छा अच्छा, नहीं भैया बिल्कुल, जो अधिसूचित फसलें होते हैं उनको बीमा अपन जरूर करवाएं, जिससे भैया कोनो भी आपदा के द्वारा जो फसल को नुकसान होते उसे अपन बच जाते हैं,
1: कीटाणु लग जाते हैं।
0: बिल्कुल भैया, चलो मोहन भैया आपने हमसे बातचीत करी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जयराम जी।
0: एक और किसान भैया अपने संगे हैं, तो भैया अपना नाम बताओ।
1: अपना नाम है कपिल नायक।
0: तो कपिल भैया अबे खेती किसानी में क्या हो रहा है?
1: अबे तो खेती किसानी में रज्जी भैया सोयाबीन की फसल लगाए हैं अपन।
0: अच्छा,
1: तो सोयाबीन में का है पीला मोजेक रोग आ रहा है, एक रोग पीला मोजेक का है, पीली फलिया पड़ रही है, पीड़ो पड़ रहा है, फलिया गिर रही है, बहुत समस्या आ रही है किसानों की लाने हमारे पास समय।
0: तो कपिल भैया जा बताओ कि अपन ने कौन सी किस्म लगाई है?
1: अपन ने लगाई है ब्लैक गोल्ड, 2170 भी लगाई है।
0: तो बीज उपचार करो तो भैया?
1: हाँ, बीज उपचार करके ही बहुत हो, बदलाल सी दवाई लिया है से।
0: हाँ,
1: वही से बीज उपचार करो तो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है भैया। तो भैया अबे फसल में खास तौर से क्या समस्या आ रही है?
1: अबे तो पीला मोजक रोग लग रहा है, पीले पड़ रहे हैं और फलिया डर रही है, मतलब

0: वो मैं सब पी लेने से।
1: अच्छा
0: हाँ, तो क्या समस्या आ रही है भैया आपको बताएं।
1: तो भैया देखो, पीला मोजेक रोग जो एक विषाणु के द्वारा फैलत है और ओखो फैलावे वाली एक सफेद मक्खी होते है।
0: हाँ।
1: तो ओखो नियंत्रण करवो बहुत जरूरी है। विशेषज्ञ हाँ। जो दवाई बताऊ थे ओको छिड़काव भैया अपन फसल पे करें समय से, है ना।
0: तो छिड़काव तो करो है दवाई को अपन ने।
1: तो भैया उसे नियंत्रण नहीं हुआ है।
0: नियंत्रण अब तो नहीं हुआ, समझ में अब आ गए दो चार दिन बाद में। अब अपन ने अभी डालो है कल ही दवाई पर, तो चार पाँच दिन असर दिखाते अंतर समझ में आउे।
1: बिल्कुल भैया। और अब देखो पानी खूब बरस रहा है।
0: हाँ पानी खूब गिर रहा है भैया, रात में तो बहुत पानी गिर रहा है, नरवा आ रहा तो हमारे।
1: तो भैया फसल में भी पानी की भराव की स्थिति बन जाते है, तो पानी निकासी की क्या व्यवस्था करत अपन?
0: पानी निकासी को अपन जैसे जी अन्य बन गए जैसे दिया थे मोटी मही से अपन ने फोर फार दें थी भरी गलेगा इसो।
1: हाँ
0: पानी निकल जाता अपने चलो जाते नरवा में धार बने से।
1: बिल्कुल भैया बहुत अच्छी बात है, पानी निकासी की व्यवस्था जरूर करें। और भैया अब पीलापन फसल में आ रहा है तो ओको जो कारण भी हो सकता है कि ज्यादा जल भराव की स्थिति के कारण और धूप ना मिलवे के कारण फसलें पीली पड़ रही हैं, जा भी विशेषज्ञ बता रहे हैं।
0: एक हमने परीक्षण हमारों ने किसान भैया ने 8-10 जनों ने बैठ के जो करो है ओको कि पहले जब वर्षा नहीं हुई है वो पानी की जरूरत थी जब अगले महीना में।
1: हाँ
0: बहुत समस्या सोई आ रही है कछु। हाँ बरवार बहुत बढ़ गई है, वो खुला रोप मिल गो और वो जमीन में नहीं गई नमी से, वो वजह से भी पीला मोजेक पकड़ रहा है लग रहा है फसल में।
1: तो भैया आप ही के खेत में पीला मोजेक लग रहा है?
0: सबके सबके गांव भर के पीला मोजेक आ रहा है, हमारी जी में नहीं अकेले गांव भर के किसान भैया की।
1: हाँ तो भैया देखो सब मिलजुल के ही अपन ये समस्या को निदान करें। और जा बताओ भैया उड़द की फसल सोई लगाए?
0: उड़द की फसल तो भैया बाजरी कौन किसान लगा दिए थे, हम तो नहीं लगाए यहाँ का सोरा तभी जल्दी फसल आ जाते, अब आप पानी के गाँव आ गए भी और वजह से नहीं लगा हुई थी। और हमारे तो कहा मोटी है भरी जमीन भी नहीं जाऊंगा मोटी जमीन में।
1: अच्छा अच्छा। और भैया सब्जियों की खेती सोई करा था अपन?
0: हाँ सब्जी की खेती करा थे भैया, अपन गोभी लगाए हैं।
1: गोभी लगाए?
0: हाँ गोभी की
1: वो पत्ता गोभी।
0: हाँ पत्ता गोभी भी लगे हैं अपने पास में, माने अपने पास तो नहीं अपने गांव में लगे हैं और दूसरे किसान भैया के।
1: तो भैया गोभी और पत्ता गोभी में तो खाद खूब लगा थे?
0: हाँ जो देसी खाद जाने पड़ा था, देसी खाद से हो तो गोभी तो।
1: तो भैया देसी खाद की पूर्ति कैसे कर लेते?
0: अब गोबर को खाद अपन कछु अपने पास में जानवर है जैसे भैंसे है गन्ने है अपने पास में।
1: हाँ
0: तो उनको गोबर हो जाए कछु अपन गाँव में खरीद खराब लेते हैं, जो किसान भैया ने बेचा था जिनको जरूरत नहीं है, मतलब वो गोभी नहीं लगा रहे।
1: हाँ हाँ
0: तो किसान बेच भी देते हैं या डेयरी से ले लेते अपन खाद मतलब गोबर को।
1: चलो बहुत अच्छी बात है भैया, गोबर की खाद को प्रयोग अपन कर रहे हैं, इसे अपनी मिट्टी में सुधार होते है और जो खेत की पोषक क्षमता है भारी बढ़त है,
0: फसल अच्छी मिलत है अपन को।
1: तो कितने ढोर बछे रूपाल है भैया?
0: 4-5 भैंसे रखे और 2 खज्जे गन्ने हैं अपने पास में।
1: अच्छा अच्छा। तो कितना दूध दे रहे हैं भैया?
0: भैंसे अब अपन जाए थे 15 लीटर दूध दे दिए थे, अब 3 भैंसे लग रही है अपने पास में, 1 भैंस गया बने दिया अभी बारी है महीना धूप में।
1: तो भैया 15 लीटर दूध को अपन का करत हो?
0: अपन तो गज्जी भैया घी जमवाओ थे घर घी लाने, मतलब घी हो जाते रिश्ते रिश्तेदार हो घी भी अंती थे अपने जो अपने रिश्तेदार हैं जानो मानो ले ली थे।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: पैसा दे दी थे अपन हो ऐसी बात नहीं ना?
1: नहीं अच्छी बात है भैया।
0: और अपने रिश्ते रिश्तेदार हो भी चाहे या अपने घर परिवार वालों हो चाहे तो अपन घी देता उनके लाने।
1: हाँ
0: भी अपन पैसा दे दे सो अपन खरीचा पर लिया है बाजार से, सो अपने भैंसों गन्नों के लाने खरीचा पर चुनी हो गई और का मिला भी लाने।
1: बिल्कुल भैया देखो पशुओं को आहार देवो भी आजकल बहुत महंगो हो गया है, तो भैया जो पशुओं के जो दुग्ध उत्पाद है उनसे भैया अपन को पूर्ति करने पड़ है
0: और का
1: है ना। और भैया बरसात के मौसम में अपन पशुओं की देखभाल के लाने कौन कौन सी बातों को ख्याल रखा
0: तो? भैया बरसात में तो जैसे अपन मोई मोड़ो की देखभाल करते हैं अपने ऐसे ही उनकी पशुओं की देखभाल करते अच्छी, मतलब छायादार में अपन उनको बांधा थे जहाँ पानी ने उनको लगे रींगे ने भी, और मतलब सर्दी जुकाम कछु भाव तो अपन उनकी लाने गुड़मुड़ की लड्डू अजवान मजवान की जी दिया गया अपन, मतलब ऐसे देसी उपचार।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ तो अपन जी मतलब हर 8-10 दिन में देते रहते उनकी लाने ये देसी उपचार अपनों बनावा लीजिए, तो वो मैं कह रहे थे कि जैसे अब बकरवारी की कोस होते माने अपने बुंदेलखंडी भाषा में।
1: हाँ।
0: तो बहुत फायदा करा।

0: थे, दुआ आसरा है वो लगा थे अपने थे अस्पताल।
1: चलो बहुत अच्छी बात है भैया।
0: हाँ तो भी आ जाते अपन उनको बुला, फोन ऑन कर दे।
1: और भैया पशुओं को टीकाकरण से ही करवाओ।
0: हाँ टीकाकरण करवाओ थे, अब टीकाकरण अभी अक्टूबर में हुई है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ वो अक्टूबर में अपन करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है।
1: चलो भैया बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ।
1: और कछु आप अपने अनुभव खेती किसानी के जो हैं हमारे किसान भैयारों को बताओ चाहे तो बताएं।
0: हाँ तो हम तो आप अनुभव जो ही बताओ चाहते रजी भैया आपको बतावे कि सब किसानों के लिए खेती अच्छी मिल जाती है करो चाची। और मतलब ज्यादा अंग्रेजी दवाई के चक्कर में ना पड़ो चाची, देसी दवाई को उपयोग करो चाची, देसी खाद को उपयोग करो चाची। और अच्छी देखभाल मतलब राखो चाची। कहा से अपने सागर जिले में छोटी छोटी सी जमीनें बची हैं, एक एक एकड़ डेढ़ एकड़ पचास पचास डिसमल से ज्यादा बड़े किसान नहीं है अपने सागर में।
1: हाँ।
0: तो अपन तो जाकर कि जो चीज में अपन को अच्छा पड़ता दिखावे, जैसे साग भाजी है अपने लाने माने गोभी है, अरे भिंडी बरबटी है, कछु भी मतलब ऐसी चीजें लगावो जो उनसे पैसा की आय ज्यादा हो, परिवार चल सके। परिवार में सब जगह पांच पांच छह छह सदस्य है एक परिवार में, जमीनें हैं थोड़ी थोड़ी।
1: बिल्कुल भैया आपने बहुत नौनी बात कह दी कि खेती में अतिरिक्त आमदनी को बहुत महत्व है और अपन को खेती से जुड़े भाई अन्य व्यवसायों की तरफ भी ध्यान देने पड़े। खेती के संगे अगर अपन पशुपालन कर रहे हैं, संगे संगे खाद्य प्रसंस्करण से भी जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है भैया। चलो कपिल भैया आपने हमसे बातचीत करी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राम राम भैया।
1: राम राम। एक और किसान भैया अपने संगे हैं। भैया का नाम आपको?
2: अतुल चौबे।
1: तो अतुल भैया अबे किसानी में का हो रहा है?
2: अबे किसानी में थोड़ा बिंबाव है।
1: अच्छा।
2: मका भी भाई है, गोभी लगी है थोड़ी सी।
1: अच्छा तो सोयाबीन और मका की का स्थिति है भैया?
2: मका तो अच्छी बड़ी बड़ी हो गई है बहुत।
1: अच्छा तो मका कौन सा लगाओ? तो भैया देशी के जो स्वीट कॉर्न आ रहा है वो लगाओ?
2: वो देसी है थी।
1: अच्छा
2: अपने थे की। आड़ी भी हो रही है बहुत।
1: तो आड़ी का हो रही भैया?
2: वो बजा बड़े की वजह से
1: ज्यादा बढ़ोतरी हो गई,
2: ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई है।
1: तो कितने दिन की फसल हो गई है?
2: बात तो अपनी हो गई दो महीना की।
1: तो भैया कछु समस्या तो नहीं आ रही और कछु रोग दोग तो नहीं लग रहा?
2: नहीं रोग दोग तो मैं मकान में कछु नहीं लग रहा, बस आड़ी हो रही है।
1: अच्छा अच्छा।
2: दवाई भी डर गई थी, कचरा चढ़ा तो कछु नहीं है वैसा।
1: और भैया ढोर बछेरू से ही पाले का अपन?
2: हाँ से गज्जा है।
1: अच्छा तो वे कितो दुग्ध उत्पादन कर रही है?
2: अबे गज्जा तो गयावन है। भैंस लगत है।
1: अच्छा वो कितो दूध दे रही भैया भैंस?
2: चार लीटर।
1: तो भैया पशुओं को बरसात में कैसे ख्याल रखा थो?
2: वो चद्दर सेट बनो है।
1: अच्छा
2: चद्दर सेट में बांध दी, पानी खुलो तो बाहर बांध नहीं। चारो वार होगा तो जो काट खिलार दी।
1: तो भैया बहुत ज्यादा हरो चारो तो नहीं खिला रहे आप?
2: थोड़ो बहुत भूसा भी रख दी रात में एक काटे हम हरो चारो।
1: बहुत अच्छी बात है भैया। देखो बहुत ज्यादा अगर हरो चारो अपन पशुओं को देते हैं तो उनके लाने भैया कई बार जो बरसाती पानी भी उनके पेट में चलो जाते हैं तो उससे भैया उनको अफरा की समस्या हो जाते हैं और भी कई समस्याएं पशुओं में हो जाते हैं।
2: नहीं नहीं एक आइटम हरो चारो सुबह टाइम बाकी को भूसा धर दे।
1: तो संतुलित मात्रा में आहार को अलग ही महत्व है भैया, खासतौर से अगर पशुपालन की अपन बात कर रहे हैं तो। तो टीकाकरण कहाँ से करवाऊ भैया?
2: टीकाकरण
1: डॉक्टर आ जाते?
2: हाँ डॉक्टर आ जाते।
1: चलो बहुत अच्छी बात है भैया। और भैया प्राकृतिक खेती की भी खूब बात हो रही है, जैविक खेती की भी खूब बात हो रही है, तो ये दिशा में आप का प्रयास कर रहे हैं?
2: वही कर रहे हैं।
1: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती भैया ऐसी खेती है जो उनमें रसायनों को कम से कम या बिल्कुल प्रयोग नहीं करो जाते और इनमें भैया खेती की लागत भी कम होते और जो कृषि उत्पाद अपन को मिला थे वो भैया गुणवत्ता वालों मिला थे, अच्छो मिला थे, रसायन मुक्त मिला थे, तो के दाम भी अच्छे मिला थे अपन के लाने। तो भैया प्राकृतिक खेती कर हो आप?
2: बिल्कुल।
1: चलो भैया आपने हमसे बातचीत करी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। बमहोरी ढूंढर के एक और किसान भैया अपने संगे हैं, उनसे भी बातचीत कर ली जाए। भैया का नाम आपको?
0: जामा तो सबल जान है भैया, गुड्डू चौबे नाम है, हम पान मोहन लगाते थे।
1: वाह भैया गुड्डू भैया बहुत पुराने श्रोता हो आप तो आकाशवाणी सागर के।
0: जी जी जी।
1: तो बताओ भैया अब खेती किसानी में का हो रहा है?
0: खेती किसानी में रज्जू भैया बहुत मेहनत करी है, सोयाबीन अच्छो बना ले रहे थे।
1: हाँ
0: लेकिन हमारी नहीं, हमारे गांव घर में नहीं, हम तो जहाँ देख रहे होता है देखो लाल चट्टा से हो रहा है वो।
1: अच्छा।

0: हाँ इल्ली की दवा जहाँ से ये पहने मनो का है के वो पीड़ा मोजे लग रहा होगा तो वो तक जहाँ जहाँ चट्टा हो तो फरवरी नहीं जेब गासी लगे सुबह ही लगी जगह वो को उपाय नहीं पानी गिर रहा दवाई बताई कछु हालांकि बहुत सुधार बस कल है लेकिन अपन कर है कोशिश के दवाई जो बताएंगे तो डर है।
1: नहीं भैया बिल्कुल, देखो जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पीला मोजेक के लाने तो खास तौर से सफेद मक्खी को नियंत्रण कर वो बहुत जरूरी है, और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लाने विशेषज्ञ जो दवाई बता रहे हैं उको भैया अपन सही मात्रा में सही सांद्रता में उको छिड़काव अपन फसल पे करें तो निश्चित तौर पे भैया पीला मोजेक बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और भैया सब्जियों की फसल सो ही लगाए हो
0: तो समय जाने लगा थे थोड़ी थोड़ी और कचु भर का टमाटर लगा था तो घर को हो गए पीढ़ी को उगा के लेगा तो 12 महीना फिर मैं बेसा किलो चला थे गया थे अब लगा गए बस गाड़ी में तो गोभी मैंने धन देखो लगा उठे बेच वही खो वो हमारे ये सो है चाहे कोई 2 एकड़ है तो एक एकड़ में गोभी लगा ले एक में सोयाबीन दे रहे जैसे हमारे 10 एकड़ है तो 1 एकड़ में 2 एकड़ में गोभी जितनी कर सके वो नींद न भी पड़ा थे दबाव से नहीं हो तो वो हाथ से नींद पड़ा आदमी लगा ले या घर की नींद आता रहो तो हमारे सब जाने लगा है थोड़ो थोड़ो ज्यादा रखवा में नहीं तो कौन 1 एकड़ में कौन 2 में कौन आधी एकड़ में तो संग बेकट जात गाँव से खरीद भी बार जा गाँव से बेक जात।
1: बहुत अच्छी बात है भैया, आपको गोभी की जो सब्जी है उखो बेचवे के लाने मंडी नहीं जाने पड़ता है, गांव ही के गांव में आपको दाम मिल जाते की।
0: अबे हमारे कच्छ 10-25 आदमों ने हमारे थे मूरा की खेती करी है तो इस साल बरसा कम भाई तो अबे मूरा निकालेगा उस मूरा पटा के पालक में और अच्छे दाम में लगाए मूरा तो मेहनत भी नहीं है मूरा में दवाई छिटक दे अकेले धोवो कठिन कहा।
1: तो भैया मूरा कितने क्षेत्र में लगाए हो
0: आप? नहीं लगा साहब धूप नहीं क्या मन और किसान ने लगा है ये साल से चालू करी है बेट निकाल दी थे ट्रैक्टर से बहुत मोटे मोटे
1: अच्छा
0: तो माटी दिया था पुल खाए और काम करो पानी गिरत भी रहे तो बेट पे रहते सो को दिक्कत नहीं है तो पत्थरों पर रख बस करे मूरा ये साल अच्छो ठंड कैसे मूरा निकले है मूरा भी बेच भी नहीं जाने पड़ी आदमी को।
1: भैया चाहे मूरा हो चाहे गाजर हो चाहे अदरक हो चाहे हल्दी हो ये जो कंदीय फसलें हैं इनके लाने जमीन तैयारी बहुत जरूरी है और जमीन जितनी अच्छी भुरभुरी हुई है उतनी अच्छी फसल हुई है तो ये बात को अपन ख्याल रखें। और भैया सरकारी योजनाएं जो किसानों के कल्याण के लाने चलाई जा रही हैं उनमें से भैया कौन कौन सी योजना को लाभ आपने लो है?
0: अपन को रज्जू भज्जा किसान सम्मान निधि मिला थे और आवास भी हमारा होगा और बहु को लाड़ी बहना के मिल रहे भगवान के पास है सभी लाभ मिला थे जो चल रहे हैं सुनेंगे और KCC बनवा सो अपन जो बीमा बीमा को अलग से निकालवा उन पर फसल को पालकी करवा दे सो अपने वो बीमा कट जा सो बीमा को अलग से निकलने का पैसा घर से KCC बनवा लेंगे सो वो अपने जरूरत भाई जो निकाल लिया जितने अन्य भाई जो जमा अच्छी सरकार की अच्छी हुई ना या KCC की हुई।
1: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, आप जो किसानों के कल्याण के लाने सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनको फायदा आप ले रहे हो और अपनी खेती को प्रगतिशील बना रहे हो, आपने हमसे बातचीत करी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय
1: राम जी। तो किसान भैया बिन्नारो आज बम्होरी ढूंढर के किसान भैयारों से उनके खेती किसानी के अनुभव अपन जान रहे थे और एक ही संगे हो गए है चलबे की बेरा तो अब हमें देव आज्ञा जय राम जी की।

तो भैया बिन्ना हरो जो हतो आज को साप्ताहिक क्रम आकाशवाणी गांव में एक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे ग्राम बम्होरी ढूंढर की स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित कार्यक्रम। और एक बार फिर चल रहे हैं भैया लोक संगीत की तरफ, तो आओ सुनाते हैं कैलाश खरे अलंकार को गाओ भाव जो लोकगीत।

तो जो लोकगीत अभी अपन सुन रहे थे कैलाश खरे अलंकार को गाओ भाव। और अब बारी आ गई भैया आज की मंडी भाव और मौसम की जानकारी की। तो गेहूं राव 2450 से 4735 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5170 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 5825 से 9100 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन 2945 से 6205 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग 6500 से 6500 एक ही भाव रहो, मक्का 1890 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल और राई सरसों 6340 से 7645 रुपये प्रति क्विंटल। तो जी तो हती भैया मंडी के भाव और मौसम की जानकारी भी आपको दे चलें। आज को अधिकतम तापमान रहो 24.1 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 6 डिग्री कम रहो, न्यूनतम तापमान रहो 20.9 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहो, आर्द्रता सवेरे की 98% और संजा बिरिया भी 98% दर्ज करी गई, वर्षा आज भैये 0.8 मिलीमीटर और कुल वर्षा अभी तक हो चुकी है 688.9 मिलीमीटर। और इन्हीं जानकारियों सूचनाओं के संगे आज के ग्राम सभा कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा है। तो आप सब जनों से हम ले रहे हैं आज्ञा, जय राम जी की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 MHz पर रात के 8 बजे हैं।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बज चुके हैं श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत संगीत। तो कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है, ये है फिल्म किसना से। सुखविंदर सिंह इस्माइल दरबार, आयशा इस्माइल दरबार और एस शैलजा की आवाज़ में ये गीत है। इस गीत को जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत निर्देशन है इस्माइल दरबार का।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप आकाशवाणी के सागर केंद्र से सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत है, शंकर एहसान लॉय ने इसका संगीत तैयार किया है और ये गीत है फिल्म कल हो ना हो से।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं रईस फिल्म से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में गीत। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ यह गीत है, संगीत निर्देशन प्रीतम का है।

श्रोताओं, समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में एक और गीत हम शामिल कर रहे हैं। ये है एयरलिफ्ट फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, कुमार का लिखा हुआ, संगीत निर्देशन अमाल मलिक का।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात के 8:20 होने को है। बस कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे कार्यक्रम संगीत सरिता के साथ।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात के 8:20 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। आप सुन रहे हैं ये गैर फिल्मी गीत, समीर का लिखा हुआ, आवाज और संगीत लकी अली।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना लकी अली की आवाज़ में। एल्बम का नाम था कभी ऐसा लगता है। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में गीत। फैज़ अनवर ने इस गीत को लिखा है, संगीत साजिद वाजिद का है। एल्बम का नाम है दीवाना।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत कुछ गैर फिल्मी गीत और संगीत आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सागर संवाद।
1: सागर संवाद। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर। सागर संवाद के आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, पोषण, आहार और हमारा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की असली पूंजी है। सही खानपान, संतुलित आहार और पोषण के प्रति जागरूकता हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी जरूरी है, इसी पर आधारित है आज की हमारी चर्चा। हाल ही में हमने शहर के विभिन्न वर्गों, महिलाओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि हमारी थाली में कितना पोषण मौजूद है और कितना पोषण हमें चाहिए। पोषण आहार पर और पोषण सप्ताह पर जानकारी देते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष जैन,
2: पोषण सप्ताह हमें जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप में या दैनंदिनी में जो भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस के लिए वीक है। और हमें साथ में आज के समय में जितनी भी मैक्सिमम बीमारियां होती हैं, ज़्यादातर बीमारियां जो हो रही हैं वो भोजन से संबंधित ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे लीवर से संबंधित हो, इवन जो किडनी से संबंधित हो। आजकल जितनी भी ये हरी सब्जियां या जितने भी भोजन होते हैं इनमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड इनके यूज होने के कारण से भी कोई ऑर्गेनिक या प्राकृतिक रूप से भोजन नहीं मिल रहा है। तो इन सब के लिए अवेयरनेस के लिए ये पोषण सप्ताह है। साथ में पोषण सप्ताह में दूसरा भी कि दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि आप अंडर वेट भी ना हो पाएँ, ओवर वेट भी ना हो पाएँ, उसके लिए भी इसकी अवेयरनेस आना जरूरी है। इन्हीं के लिए पोषण सप्ताह है और सबको इस पर अवेयर होकर एक स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ये महती जरूरत है कि सभी इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसे संकल्प लें और फिर भविष्य को इसके माध्यम से सुरक्षित।
1: आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों के विचार।
3: रविंद्र घोषी।
1: रविंद्र भाई, हमें ये बताएं कि न्यूट्रिशन के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं आप?
3: भैया हम तो वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानते उसके लिए हम बता रहे हैं भैया कि अपन को जैसे शुगर है, शुगर बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए और जैसे तेल वगैरह जो चीज़ें हैं इनसे बहुत बचें। फुल्की वगैरह जो अपन जैसे चाट मोमोस वगैरह खाते हैं इनमें मैदा वगैरह उल्टा सीधा मिला रहता है, उससे अच्छा है फास्ट फूड से बचें। और अपन फल फ्रूट पर ज़्यादा ध्यान दें और अपना जैसे गाय का दूध है, घी वगैरह इन पर करें तो बढ़िया है भैया। खान पान में भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, जैसे 20-25 साल की एज 30 तक होती है उसमें अपन हर चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं। आप समय रख कुछ भी खा लो, 30 के बाद थोड़ी बॉडी कम होती है तो उसके लिए अपन ध्यान से चीज़ें खाएं, ध्यान रखें, फल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लें और तेल से बचें। तो एक्सरसाइज के लिए भैया सबसे अच्छा है कि सबसे बढ़िया क्या है जो जिम कर रहे हैं प्रोटीन वाली डाइट लें और अपने तेल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बचें। और जैसे बाहर का तो खाना बंद करें, हर चीज़ में मिलावटी हो रही है आप देख ही रहे हो, तो वो अपने फल फ्रूट पर ध्यान दें और बाकी अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें।
4: सोनू ठाकुर।
1: सोनू भाई, हमें ये बताएं कि न्यूट्रिशन, पोषण आहार क्या है और पूरे परिवार में कैसे हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, महिलाएं हों घर में, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कैसे ध्यान रखना चाहिए?
5: खान पान का ध्यान थोड़ा सा तेल से बचे,
1: हाँ,
5: और फैटी चीज़ें ना खाएं। और उम्र के बाद थोड़ा सा शरीर पर ध्यान देना चाहिए, डाइट पर ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम 24 घंटे में 45 मिनट तो अपने शरीर को दें।
6: मैं अनिल रेखवार। हम हर साल 1-7 सितंबर तक हम पोषण सप्ताह मनाते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, लोगों को सही खान पान के प्रति जागरूक करना। साथियों, पोषण का मतलब सिर्फ भूख मिटाना नहीं है, पोषण का मतलब है हमारे शरीर को वो सभी जरूरत मिलना जिनसे हम स्वस्थ रहें, बीमारियों से लड़ सकें और बढ़ सकें। इसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व शामिल हैं। आज भी हमारे देश में बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, कई महिलाओं में खून की कमी है, यानी एनीमिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी की कमी, गलत खान पान की आदतें। हमें अपना खान पान बदलना होगा। थाली में सिर्फ चावल रोटी नहीं बल्कि दाल, हरी सब्जियां, दूध, अंडा और मौसमी फल भी होने चाहिए। जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स से हमें दूरी बनानी होगी। जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा और बच्चा स्वस्थ होगा हमारा देश स्वस्थ होगा। तो आइए इस पोषण सप्ताह पर हम सब मिलकर संकल्प लें, हम अपने घर में संतुलित आहार बनाएंगे, दूसरों को इसके लिए जागरूक करेंगे और कुपोषण मुक्त भारत के सपने को साकार करेंगे। सही पोषण, देश रोशन, सुपोषित भारत, विकसित भारत।
4: नमस्कार, मेरा नाम माधवी है। पोषण हमारे जीवन की बुनियाद है और बिना सही पोषण के हमारा शरीर चल नहीं सकता। तो पोषण हमें एनर्जी देता है, पोषण से हमारी बॉडी बनती है, हमारा शरीर बनता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी हमें पोषण से ही मिलती है। जैसे हम 5 साल तक के बच्चों की बात करेंगे तो 5 साल तक के बच्चों में जो ग्रोथ रहती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो इसलिए डॉक्टर हमें बोलते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध बहुत ज़रूरी है, उसके बाद प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को खाना दें और बार बार दें, जो कि पचने में आसान खाना हो, जैसे दाल का पानी।

0: हो गया, खिचड़ी है, फलों की प्यूरी है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन डी उनके दिमाग के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, ये बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़ों की पोषण की बात करेंगे तो अब बड़ों के पोषण के लिए मेंटेनेंस और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक संतुलित थाली में जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे 50% अपनी सब्जी फल है, 25% अनाज हो गया, 25% दाल हो गया, पनीर हो गया, फाइबर हो गया। उम्र के साथ साथ कैल्शियम की, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि इनकी डिफिशियंसी, इनकी कमी होती जाती है। और पानी खूब सारा पीना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सही पोषण लेंगे तो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा, और हम कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में पोषण का बहुत महत्व है।
1: मैं प्रीति सिंह राजपूत, पोषण की शक्ति को समझने का सीधा मतलब है यह जानना कि हमारा भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि भोजन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी, हमारी दिमागी ताकत और हमारे बेहतर भविष्य की चाबी है। जब हम सही और संतुलित आहार चुनते हैं तो हम केवल एक वक्त का भोजन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने शरीर को मधुमेह, मोटापा और कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच दे रहे होते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन। आज हमारे घरों में अक्सर भोजन तो भरपेट होता है, लेकिन उसमें पोषण के जरूरी तत्वों की कमी रह जाती है। पोषण की असली शक्ति हमें किसी महंगी विदेशी सप्लीमेंट में नहीं, बल्कि हमारे स्थानीय और पारंपरिक भोजन में मिल सकती है। हमारी थालियों में शामिल हो दालें, हरी और मौसमी सब्जियां, मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स, दूध, दही और अंकुरित अनाज। ऐसी विविधता से हमारे शरीर को मिलता है पर्याप्त प्रोटीन और जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इस संदेश के साथ पोषण की आवाज देश के हर कोने में गूंज रही है। यह हमें याद दिलाता है कि एक सुपोषित भारत का निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास की गर्भवती माताओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के सही पोषण का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जीवन के शुरुआती वर्षों में ही बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 85% विकास हो जाता है। इसलिए आइए आज से अपनी थाली को बनाएं विविध, संतुलित और पोषण से भरपूर, क्योंकि सही पोषण ही स्वस्थ जीवन की नींव है और सुपोषित भारत हमारे उज्जवल भविष्य की पहचान।
2: मोहम्मद आसिफ मकरानी, सदर बाजार। खाने खाने में अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें कि शरीर को लगे, और दाल हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और सुबह हल्का फुल्का खाना चाहिए, दोपहर में सलाद, और बच्चों को अच्छा खिलाना चाहिए और अपन को भी खाना चाहिए, और बुज़ुर्गों को भी अच्छा खाना देना चाहिए जिसमें कि पौष्टिकता हो बढ़िया और शरीर को लगे।
3: बच्चों के लिए संपूर्ण पोषण इस प्रकार के 0 से 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, पानी भी नहीं, यही अमृत है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने के बाद 2 साल तक सबसे नाजुक समय होता है। माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, दाल, चावल, थोड़ा सा घी और मसली हुई सब्जी, दलिया, सेब, सूजी की खीर, मसला हुआ केला, पपीता, चीकू, दही, इस तरह से आप दे सकते हैं। दिन में 4-5 थोड़ा थोड़ा खिलाएं। साथ में 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए अपने बच्चों को घर पर ही खाना दें, अलग नहीं बनाना है। रोज की आदतें, आदर्श थाली होना चाहिए, जैसे सुबह दूध, फिर भीगा हुआ बादाम, अंडा या पराठा, दोपहर में रोटी, दाल, हरी सब्जी, दही, चावल, शाम को फल, अमरूद, संतरा, आम, रात को हल्का खाना प्लस दूध देना चाहिए। 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए टिफिन में पराठा, सब्जी, पूड़ी, इडली, सांभर दे सकते हैं। जो कुपोषित बच्चे हैं उनको बिल्कुल ये सब चीज़ खिलाना अति आवश्यक है। मोटा अनाज, रागी, ज्वार बच्चों को हाइट।

0: बढ़ाता है। मूंगफली की चिक्की, तिल, गुड़, सत्तू, ये देसी सुपर फूड हैं। उम्र के हिसाब से वजन, हाइट कम होना, बार बार बीमार पड़ना, पढ़ाई में मन न लगना, थकान, बाल झड़ना, पीला देखना, ये सब कुपोषण के लक्षण हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा, चॉकलेट, चिप्स, पैकेट जूस ज़्यादा, ये नहीं देना चाहिए। एक सुनहरा नियम, रंग बिरंगी थाली देना चाहिए बच्चों को। आपके बच्चे की उम्र कितनी है उसी हिसाब से एक देसी डाइट अवश्य देना चाहिए। बच्चों को मतलब जो टीकाकरण होता है वो भी नियमित कराना चाहिए, जिससे कि आगे की बीमारी रोकथाम के लिए उसको कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन और खनिज भी मिलना चाहिए, रेशे और पानी मिले। जैसे कार्बोड शरीर की बैटरी के स्रोत गेहूं, चावल, मक्का है। प्रोटीन मतलब शरीर की बिल्डिंग मटेरियल स्रोत कहलाता है, जिसमें दाल, दूध, पनीर, अंडा। वसा ऊर्जा का गोदाम स्रोत कहलाता है, जैसे घी, तेल, मेवे। विटामिन के लिए आप रक्षा का स्रोत फल, हरी सब्जियां एवं पाचन को ठीक रखते हैं। सही पोषण ही पहचान है। स्वस्थ बच्चा के लिए यही सब होना अति आवश्यक है।
1: मेरा नाम राम बिहारी से है, परिहार है, और मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ, जिम भी जाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, और विशेष करके अपने खाने पीने और जो रेस्ट है उस पर ध्यान देता हूँ। क्या है, हमारे शरीर के लिए जितना व्यायाम एक्सरसाइज जरूरी है उतना ही भोजन अच्छा होना चाहिए, और भोजन के साथ साथ रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। अगर रिकवरी नहीं होगी तो अगले दिन अपन वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, उतनी एनर्जी नहीं होती उसमें, और कुछ इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए हम। और नियमित रूप से अच्छा व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं और अच्छा स्लीप लें।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पोषण आहार पर सागर के नागरिकों और विशेषज्ञों की खास बातचीत। आज के संवाद से ये साफ है कि सेहतमंद रहने के लिए महंगे खाने की नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण की जरूरत होती है। अपने दैनिक भोजन में हरी सब्जियां, दालें और स्थानीय मौसमी फल जरूर शामिल करें। आज के सागर संवाद में बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिखकर या संदेश भेजकर जरूर बताएं। अब अपने दोस्त जय शेखर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सागर संवाद। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। रात के 8:45 होने को है। बस कुछ ही पलों के इंतजार के बाद आप सुन सकेंगे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन

0: सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात,

0: रक्षा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज एज द ग्रुपिंग मार्क्स द 20 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2026। ब्रिक्स समिट 2026 इज बीइंग होस्टेड इन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, फ्रॉम 12th टू 13th सितंबर 2026 अंडर इंडियाज चेयरशिप थीम Building for resilience, innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
7: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता

0: पहुंचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
4: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
5: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम

0: किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रास लीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर रात के 9 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पहला गीत शामिल कर रहे हैं आराधना फिल्म से। ये गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। फरमाइशकर्ताओं के नाम आपसे साझा कर लेते हैं। सिरसा से हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजा है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा ने। बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति, वंशराज सिंह और MS अब्बासी। गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। किसन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजा है शास्त्री नगर बीड शहर से। कुछ पत्र हमें मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, साकिब, छोटू और हसनैन। दीवाल से शंकरलाल और वनीता। खंडवा से अशोक कुमार और वंदना वाघे। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला, श्याम कुंवर, अनुश्री, अशोक, दीपक और आसमा। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आप सभी की फरमाइश है आराधना फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, SD बर्मन द्वारा संगीतबद्ध, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

श्रोताओं, आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम मन चाहे गीत के अंतर्गत अब अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं द्वारा हमारे पास आई है। व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं आप सभी ने पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू और गुड्डू, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, मराठवाड़ा से सुधाकर राजे, जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे, जागुताई, संचित, प्रथमेश सर्वद, कल्पना सानवी और प्रणाली, झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार और उत्कर्ष चौहान, सागर से राजेश मनवानी, शंकर, सचदेव, अनिल, सपना, चंपक भाई, निर्मल, भोले बाजाज, रूपेश मनवानी और सिंधी कॉलोनी से सीमा, महक, अंजलि, भूमि, बरखा, प्रियंका और शंकर मोटवानी। कुछ पत्र हमें मिले हैं आप सभी के। बड़वाह से प्रवीण, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज, महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता, प्रिंस, एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणिता, अर्जुन और टुकटुक, और बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और ध्वनि। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए शागिर्द फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एक्सपर सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा, झारखंड से शिवागोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली, यवतमाल से संतोष और विनोद खरसे, छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और कुंती साहू। कुछ पत्र हमें मिले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, रेखा धनीश्वरी बठेना से, सारा गांव से सुजान सहोदरा और आयुषी और कृत वर्मा, प्रहलाद यादव, राकेश, मनोज, सुषमा, संगीता, गीता, कविता और गोविंद, आप सभी ने पत्र भेजा है दमोह से, और मोहम्मद सादिक, अहमद, शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री सनावत से।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना खामोशी फिल्म से अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ में। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और संगीत जतिन ललित का था। सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता, आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे। छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी शिवन्या और अनु गोस्वामी, राजस्थान से रजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान और इरफान, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, सिल्लोड से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश, अकोला से अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा, राजवी और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं, कार्यक्रम में समय को ध्यान में रखते हुए एक और फरमाइशी फिल्मी गीत हम शामिल कर रहे हैं। आप सभी ने पत्र भेजे हैं हमें। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गाराम साहू, संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश राशि और शीतल राजेश, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, ब्रिजकांत, वीरेंद्र बेमेत्रा से और कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म पाप से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में गीत। इस गीत को अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा है और संगीत शाही का है।

श्रोता और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को अब संपन्न करने का समय हो रहा है। तो कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 9:30 होने को है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये।

एक सफल संगीतकार रहे हैं आदेश श्रीवास्तव। अपने संगीत के करियर में आपने 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म मेजर साहब का है ये गाना।

ऐसा पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसे कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: अजी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2

आदि श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी और 5 सितंबर को कैंसर ने आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और प्रस्तुत करता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगा।

0: और सॉन्ग राइटर के, मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में, बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारानिया का नमस्कार।
1: वो जब याद आए,
0: किसी की याद इतनी गहरी होती है कि आंखें बंद करो तो सामने वही चेहरा उतर आता है। यादों का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। वो हंसी सुनाई देती है, वो बातें याद आती हैं, दिल फिर उसी बीते हुए पल में लौट जाता है। समय आगे बढ़ जाता है मगर मन वहीं ठहरा रह जाता है जहां आखिरी बार साथ थे। ये रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, यादों में सांस लेते रहते हैं और यादें रात की खामोशी में एक दर्द भरी धुन बन जाती हैं।
1: बहुत

के जाने के बाद भी जैसे घर की दीवारों पर उसकी आहट ठहरी हुई है। हर शाम दरवाजे की ओर देखता ये मन, जाने क्यों आज भी उसकी राह तकता है। बहुत कुछ कहना था उससे, मगर शब्द होठों तक आकर लौट गए। अब वही अधूरी बातें रातों में साथ जागती हैं, और उसका इंतजार धीरे धीरे एक गीत बनकर भीतर गूंजता रहता।

0: उसके बिना सब कुछ तो है, मगर फिर भी कुछ भी पूरा नहीं लगता। आंगन वही है, मौसम वही है, जान भी वही है, बस उसे देखने वाली आंखों में अब पहले सी चमक नहीं। कभी लगता है उससे बिछड़कर उसे नहीं, अपने भीतर का एक हिस्सा खो दिया है। जो बातें उससे करनी थी, अब वह होंठों की खामोशी में कैद है। और यही अधूरापन हर रात दिल से एक नया गीत लिखवाता है।
1: कुछ दिल ने सुना

विरह की सबसे गहरी आवाज खामोशी ही होती है, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती। फिर भी हर सांस किसी दर्द की कहानी कहती है। मन बार बार पूछता है, क्या उसे भी कभी महसूस होती होगी? क्या किसी शाम उसका दिल भी अचानक उदास होकर याद करता होगा? इन अनकहे सवालों के बीच सिर्फ तन्हाई एक जवाब बनकर सामने आ बैठती है।

दिल जानता है कि बीता हुआ पल लौट कर नहीं आता, फिर भी आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद करती हैं। कभी लगता है अचानक वो सामने आ जाएगा और कहेगा, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन फिर यह मन अपनी ही कल्पना पर मुस्कुरा देता है और आंखें चुपचाप भीग जाती हैं। प्रेम में किसी को भूलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके लौटने की उम्मीद को छोड़ना होता है।

0: उम्मीद कभी थकती नहीं, आंखें पथराने लगती हैं, चांदनी रातें भी और गहरी होती जाती हैं। आखिरी मुलाकात की हर बात उम्र भर के लिए दिल में याद बनकर रह जाती है। उसका आखिरी बार मुड़कर देखना आज भी आंखों में एक मंजर की तरह ठहरा हुआ है। तब कहां पता था कि वह पल हमारी कहानी का आखिरी पन्ना बन जाएगा। काश उस पल को वहीं रोक लेते हम, काश आज साथ होते हम।
1: वक्त

छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर ने कहा है कि भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।